0: बट को शहीद करोगे, भारत का पैसा लेके भारत के खिलाफ आप यूज करोगे, भारत का पैसा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे।
1: अफसोस इस बात का है कि हमारी जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड सरकार ने, जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है, उसने इसको अप्रूव किया और एक ऑर्डर इशू किया कि ये सभी सरकारी स्कूलों में, लाइब्रेरीज में रखी जाएगी, सभी सरकारी कॉलेजेस में। जिस किताब में ऐसा मेंशन है कि मकबूल भट्ट, जो एक टेररिस्ट था, जो जम्मू कश्मीर को भारत से इलादा करना चाहता था, जो पाकिस्तान के इशारों पर यहाँ टेररिज्म स्टार्ट करना चाहता था और भारत से अलग करना चाहता था, उसको सजाए मौत दी गई जज साहब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके, और उसको शहीद आजम बताया जाता।
2: What began as a case of missing cash has now snowballed into a major scandal involving gold, silver and possible evidence tampering. Ram Mandir donation theft row has shaken the faith of millions. Key accused have started signing and the SIT is now investigating to find the larger players. We are getting you all the details in this report.
3: As the Ram Mandir donation theft probe intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. New revelations are coming to light every single day. In a significant breakthrough, key accused Avinash Shukla has confessed to the crime. Avinash Shukla was confronted with the CCTV footage where he could be clearly seen stealing money. Police found that Avinash bought a car with the stolen money. He got a car registered in his brother's name to avoid suspicion. Avinash Shukla told investigators that all the accused knew each other well and that the money was distributed among them equally. This gang also met regularly near the secluded area of 14 Kosi Parikrama Mark in Ayodhya to divide the stolen amount.
4: Na sirf Avinash Shukla balki chalhawa chori ke sabhi aaropi mile the, sabhi aaropiyon ke beech mein baithakein hoti thi, meeting hoti thi aur inke chalhawa chori ki rakam se hi tamam logon ne संपत्तियां बनाई। लवकुश मिश्रा ने मकान बनवाया, अविनाश शुक्ला ने ये कार खरीदी अपने भाई के नाम पर, यानी कि अभिषेक इस कार को चौथा खरीदार है जिसे चढ़ावा चूबरी की रकम से अविनाश ने अपने भाई के नाम पर खरीदा था।
3: The SIT is also probing whether the arrested accused stole gold and silver ornaments from the temple. No gold or silver has been recovered from them. Probe teams have confirmed that around 1,300 kilograms of silver and 20 kilograms of gold are currently accounted for in the Mandir treasury. However, the probe is on to find out if the ornaments were stolen and melted into gold biscuits in order to destroy the evidence. The donation theft has ignited a massive political storm. When RSS Chief Mohan Bhagwat was asked about the donation theft, he evaded the question.
5: प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं। प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे
3: हैं। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव has taken a dig at Chanda Chores by releasing an AI generated video song.

आज हम राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन यहां कर रहे हैं। हमने 2017 में इसके लिए एमओयू साइन किया था, लेकिन 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही। कांग्रेस के असहयोग के कारण यहां का काम लगभग ठप ही रह गया, लेकिन जैसे ही डबल इंजन सरकार आई, इसका काम तेजी से आगे बढ़ा और आज हम इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं मेरी कार्यशैली, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं।

0: and welcome. You're watching In The Club. I am Susan. The laughter is translating into blockbuster business for Welcome to the Jungle. The Akshay Kumar starrer has crossed the 100 crore rupees mark worldwide within days of its release, continuing its impressive box office run. This movie is the third installment in the Welcome franchise, has struck a chord with audiences, and is enjoying strong momentum both in India and overseas.
1: कोई स्क्रिप्ट है आपके पास?
2: एक जबरदस्त कहानी है.
3: और टाइटल क्या है फिल्म का?
2: वेलकम टू द जंगल.
4: रोर्स, लाफ्स एंड ब्लॉकबस्टर नंबर्स. वेलकम टू द जंगल इज टिकिंग ऑल द राइट बॉक्सेस.
5: कंग्रेचुलेशंस.

0: to the Dangal.
1: After a thunderous opening weekend, the Akshay Kumar starrer has officially stormed past the 100 crore mark at the worldwide box office. Directed by Ahmed Khan, the film has collected 8.50 crore net on its first Monday, taking its worldwide gross collection past the 100 crore milestone. The film also continued to perform well in international markets.
2: Our film army wali. और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है
3: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या
1: Interestingly, its total overseas gross has climbed up to 19.95 crore, pushing the film's worldwide gross collection to an impressive 106.48 crore in just 4 days.
4: ये आजादगंज को आजाद कराने आए हैं
5: अपने घर
6: इसको काचू रोल दे दिया कि तो हमें खा जाएगी
7: अरे वो पुरानी चावल है
8: मैं किस लिए हूँ फिल्म में
9: ग्लैमर
10: क्लाइमेक्स शूट कर ले क्या
11: तो कैसे करेंगे विलन चाहिए गुंडे चाहिए कहाँ से लाएंगे
12: इनको असलियत बतानी पड़ेगी
1: The box office journey began with 3.75 crore net from paid previews, followed by a solid 15.25 crore on its opening day. The momentum only gathered pace thereafter. Collections jumped to 20 crore on Saturday, while Sunday emerged as the film's biggest day, raking in an impressive 24.75 crore net.
13: बोला था तुम मेरे को वो देगा
14: क्या
13: अरे वो जो पिक्चर में हीरो को देता है
14: हीरोइन
13: अरे कैसी बात कर रहे हो ना ये पूरी फैमिली फिल्म है नहीं रे ऐसा बोला ही नहीं मैं
14: वो क्या होता है जो कुएं के पास होता है ना
13: प्यासा
14: अरे प्यासा तो इधर है यार
13: कुएं के
14: ऊपर ऐसा रहता ना झुकके
13: घोड़ा
14: घोड़ा नहीं बे गधे
13: बाल्टी मार के दूंगा तुम लोगों को
15: अरे यार जो तेरे हाथ में है वो यार
16: अन्ना बाल्टी
15: अरे बाल्टी थी
14: कब से बाल्टी बोल रहा हूँ कोई समझ ही नहीं रहा
1: डायरेक्टेड बाय अहमद खान वेलकम टू द जंगल इज द थर्ड इंस्टॉलमेंट इन द पॉपुलर वेलकम फ्रेंचाइज
17: लोगों की माँ बहन होती है आपकी बाप बहन हो गई है अब अच्छे खानदान का शरीफ लड़का कहाँ से मिलेगा
18: अपन पे जो हाथ डालता है अपन उसकी फाड़ डालता है
1: स्टोरी फॉलोज अ क्वर्की मिक्स ऑफ गैंगस्टर्स क्रिमिनल्स एंड एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स हुज लाइव्स कोलाइड इन अ जंगल नियर द बॉर्डर
13: कि हम लोग असली आर्मी वाले नहीं है
15: हमें जाने दो मालिक हम सब भांड है रोजी रोटी के लिए काम करते हैं
9: तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है
14: आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो
1: However, what begins as an operation resembling a film shoot soon snowballs into a series of chaotic adventure filled with comedy, action and confusion. The ensemble cast features Akshay Kumar, alongside Sunil Shetty, Disha Patni, Jacqueline Fernandez, Arshad Barsi, Jackie Shroff, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Lara Dutta, among others in pivotal roles. Entertainment Bureau, India Today.
19: Trailer khatam.
20: Ash absolutely owns the screen in Toxic, a fairy tale for grown-ups, bringing unmatched intensity and control. Backed by a powerhouse ensemble, this trippy, high-octane thriller masterfully blends action, suspense, and style, cementing Yash's cinematic dominance. Take a look.
21: It's over. When I say it's over.
22: It's dark, it's trippy, and badass to say the least. Yash makes a striking entrance as Raya in Toxic, a fairy tale for grown-ups. Commanding every frame with confidence, intensity and authority. From his very first appearance, Raya sets the tone for a high-octane, gripping drama, moving not as a character seeking validation, but as one in complete control.
0: Daddy's home.
22: Set against visually striking backdrops that seamlessly blend suspense and action, the film delivers a cinematic experience that keeps audiences on edge. The ensemble cast adds depth and nuance to the story, featuring Kiara Advani as Nadia, Huma Qureshi as Elizabeth,
8: fighting for her scraps of devotion,
22: Nayantara as Ganga, Tara Sutaria as Rebecca, and Rukmini Vasant as Melissa.
16: Ladies and ladies, vabavre bartira, vattig bartira.
22: Each bringing their own flair to the film's high-stakes narrative. Directed and co-written by Geetu Mohandas alongside Yash, Toxic was simultaneously shot in Kannada and English. With dubbed versions in Hindi, Telugu, Tamil, Malayalam and several other languages, reflecting its global ambition.

0: And we're now getting some breaking news. This is regarding the Ram Temple donation theft case. Now we're learning that Ayodhya cops will be questioning the five accused in this matter. Ayodhya top cop to lead the interrogation. Five accused to be grilled after Avinash Shukla's grilling. The court has granted permission for the jail interrogation. Police had earlier questioned Avinash Shukla, in which he admitted that yes, there was theft. And he actually stole the donation money, and he also broke down while he was shown the CCTV visuals, in which it could be clearly seen that he was stealing the donation money. And now what we're learning is that five other accused will also be grilled, and a police team and investigating officer CEO Sumit Tripathi will visit the jail to interrogate the accused. And following the interrogation of Avinash Shukla regarding the temple donation theft case, the remaining accused will now be questioned. The Ayodhya police will interrogate the accused who are involved in the Ram Mandir donation theft case inside the jail. My colleague Santosh Sharma is now joining us with more details on this. Santosh, kin paanch logo ko ab question kiya jayega Ayodhya police ki taraf se, jabki ye saamne aa chuka hai, jab ye questioning hui thi, jisme ki Avinash Shukla ne admit kar liya hai ki haan, ye chori hui thi, ab kin paanch aur logo ko question kiya jayega?
1: देखिए, अविनाश शुक्ला से पुलिस कस्टडी रिमांड के बाद रिकवरी हुई ब्रेजा कार की. अब उन पांच अन्य आरोपी हैं जिनसे पूछताछ की जानी है, जिनसे आज पूछताछ करेगी. उनके नाम रमाशंकर यादव, टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा और मनीष यादव. लवकुश मिश्रा, रमाशंकर यादव, ये कुल मिलाकर के पांच नाम है. इन पांच आरोपियों से पूछताछ करेगी, जेल में जाकर पूछताछ करेगी. जेल में पूछताछ करके उनसे जो डिटेल होगी उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन बढ़ाएगी. तो ये कहा जा सकता है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जो अयोध्या पुलिस अपनी जांच को तेज कर रही है अविनाश शुक्ला की पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद, अब बाकी के पांच आरोपियों से भी पूछताछ करेगी. और ये माना जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड भी मांग सकती है इन पांच आरोपियों की. जो पांच आरोपी है उसमें रमाशंकर यादव सबसे अहम है, टिन्नू यादव, उसका भतीजा मनीष यादव, इसके साथ ही लवकुश मिश्रा का जो साला है जिसकी वजह से ये नौकरी लगी थी, जिसने इसकी नौकरी लगवाई थी, मुख्य आरोपी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा वो. तो ये कुल मिलाकर के वो पांच कैरेक्टर्स हैं. करुणेश पांडे हैं, तो ये पांच कैरेक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और इनसे पूछताछ की जाएगी.
0: जी संतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए. सो फाइव अदर अक्यूज विल नाउ बी ग्रिल्ड आफ्टर अविनाश शुक्ला'स ग्रिलिंग, इन विच ही एडमिटेड टू ऑफ स्टीलिंग द डोनेशन मनी. एंड ही ऑल्सो रिवील्ड दैट द मनी वॉज इक्वली शेयर अमंग ऑल द अक्यूज. So the Ram Mandir Chanda Chori case is gathering political heat, keeping up with the probe picking pace, both now entering a crucial phase. Investigators are preparing for the next round of questioning, while key developments are also expected at the upcoming Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust meeting. Sources say the trust is set to meet soon, with the possible resignations of Champat Rai and Anil Mishra likely to figure on the agenda. The trust is also expected to deliberate on the SIT's initial findings and review the future temple operations. Meanwhile, police are preparing to interrogate five accused in the case. Their statements will be formally recorded, and sources say that investigators may seek police custody if required as the probe moves forward. On the political front, the opposition tirade continues to intensify. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav says that the entire country knows about the alleged theft and also claims that the incident has deeply hurt the faith and devotion of millions of devotees. BJP has meanwhile defended the investigation, asserting that corruption existed even in the past but was protected by previous governments. The party maintains that such irregularities are being exposed under BJP rule and has urged people to have faith in the ongoing probe.
2: Ram ke naam par to vote liya. पर राम का नाम बदनाम हो रहा है. अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी खुलासे हुए हैं कि वहां भी चंदा चोरी हुआ है. ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं. क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में. और चंदा चोरी तो बिल्कुल साफ हुआ है, हजारों करोड़ का चंदा चोरी हुआ है उत्तर प्रदेश में, और अंदर से ही ये सब जानकारी आ रही है.
3: अगर वो आरएसएस और वीएचपी को जिम्मेवार ठहरा रहे लूट में, तो उनको एसआईटी ने समन करना चाहिए, उनका बयान रिकॉर्ड करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये किस आधार पे कहा, ये कहने का क्या कारण हुआ कि आरएसएस ने या वीएचपी ने इस लूट में कोई हिस्सा लिया है। और अगर ये बयान सिरे से झूठा है तो सनसनीखेज और असंतोष और गुस्सा भड़काने वाला बयान है, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और उनको भी दंड मिलना चाहिए।
4: चोरी, अभी आप चोरी हो रही है उधर, आपके कंट्रोल में है ना ये ट्रस्ट
0: जी।
4: हम तो नहीं है, किसी को आपने लिया ही नहीं है उसमें, आपके सब लोग बैठे चोर मंडल, तो ये जिम्मेदारी आपकी है और आरएसएस ने भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चोरी की एक्शन होगी, मीन्स क्या होगा, जो छोटी मछली है उसको पकड़ लेंगे, बड़ी मछली को छोड़ देंगे। वहाँ अयोध्या में एक प्रकार से गैंगवार चल रहा है, अंडरवर्ल्ड, एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें तान कर लोग खड़े हैं, ट्रस्ट में भी और अयोध्या में भी कब्जा करना चाहते हैं। वहाँ राम की अयोध्या के ऊपर कुछ लोग अपना कब्जा करना चाहते हैं।
5: उस मंदिर पे कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं, उस मंदिर पे कंट्रोल इस देश के लोगों का है। और जब हम सुनते 40% पैसा ये चोरी हो गया या भ्रष्टाचार हो गया, ये गलत चीज़ है। जो भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ जो ट्रस्टीज है, ट्रस्ट में जो भी लोग है बहुत पावरफुल है, उन्होंने वहाँ पे करप्शन किया, इसलिए हम सबकी मांग है सबके ऊपर वहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए।
6: यू आर प्लेइंग विद द सेंटीमेंट, विद द डिवोशन ऑफ द क्रोर्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। दिस इज अनपार्डनेबल, दिस इज अ क्राइम एंड प्रॉपर इंक्वायरी शुड बी डन इनटू इट, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुड बी मेड इनटू इट। एंड आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट, इज हाई टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इंटरवेन एंड द मैटर शुड नॉट बी लेफ्ट टू द टेम्पल ट्रस्ट ओनली। गवर्नमेंट शुड इंटरवेन and a high level inquiry should be conducted into it, all the culprits should be taken into task so that the confidence of the people will again be restored.
0: And now shifting focus, we're getting some breaking news. Big war in Tamil Nadu over Vijay's minister. The BJP has complained to the governor against Minister P. Vishwanathan. Vijay minister is in child bad touch row. The BJP claims that an investigation should be conducted against the Vijay minister for child abuse. Earlier, the DMK had also filed a child abuse charge on Minister Vishwanathan. The charge is that the minister touched a minor inappropriately. This was a yoga day event which was being held, and the yoga day event of the video of the minister has now sparked this controversy, in which he can be seen touching the leg of a minor, after which the opposition is attacking the minister. The BJP is saying that Minister Vishwanathan must be suspended and an investigation must also be launched. So we'll show you the visuals of the yoga day event in which he can be seen touching the legs of the minor. On the right side of your screens you can see, we'll show you this video that has now stoked this entire controversy. He's a minister, P. Vishwanathan, in the TVK government, and he can be seen touching the minor. Now, what P. Vishwanathan has said in his defense is that he was assisting the affected minor, and he was saying that he was just giving aid, and he has also said that it was a very fatherly act. He was acting as a father out of concern, like a father, and there was no bad intent. That is what the minister is saying. We are showing you the

0: are watching India Today.
1: ने साल भर आपसे बहुत क्रिटिकल सवाल पूछे.
2: कैन वी ट्रस्ट द पोल्यूशन नंबर्स इन दिल्ली?
1: AQI इन द नेशनल कैपिटल रीजन हैज गॉन अप टू 900 to 1,000. मैं तो सुन ही रही हूँ तब से आपकी बात. मैं बस कहना चाह रही हूँ, हु डू इंडियंस ब्लेम फॉर दिल्ली'स टॉक्सिक एयर? कोई और होता तो शायद इस इंटरव्यू के लिए आज अग्री नहीं करता, लेकिन आप यहाँ बैठी हैं, हमारे सवालों का जवाब देना चाहती हैं, सो कूडोस टू यू. ईवी पॉलिसी क्वेश्चन मार्क अब इम्प्लीमेंटेशन पर है.
3: वी आर रेडी फॉर दैट. आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है.
1: 33% अभी भी जो पोल्यूशन आता है वो कमर्शियल ट्रक्स का है. उस पर आपकी ये पॉलिसी इतनी अग्रेसिव क्यों नहीं हो पाई?
3: आज जितना हम कर रहे हैं, क्या पिछली किसी सरकार ने इतना किया? ऑड इवन, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, इंजन ऑफ, इसके अलावा क्या किया पिछली सरकारों?
1: समर टाइम पर गैप लग रहा था. अगर आप रोड पर जाएं तो आपको दिखता है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है. दिल्ली पुलिस आपके पास है नहीं, कैसे करेंगे आप?
3: पॉल्यूशन 2 महीने करने का काम नहीं है, ये साल भर करने का काम है. बहुत ही सख्ती से इनको लागू किया जाएगा.
1: यू हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रियली चेंज द फेस ऑफ दिल्ली.
3: हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीतियां भी स्पष्ट है.
1: रेखा गुप्ता का फर्स्ट टर्म एज चीफ मिनिस्टर एंड होते होते
3: ये सवाल आपने मुझसे पहले भी पूछा था, तो आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, हम लोग देखते हैं.
1: हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल ब्रॉडकास्ट. पिछले कई महीनों और सालों में हम लगातार आपके पास खबर लेकर आ रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण कितना बढ़ गया है. हमने सक्सेसिव सरकारों में, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, लगातार सवाल उठाए. ऑड इवन चलता है कि नहीं चलता है, स्मॉग टावर काम करता है कि नहीं, आर्टिफिशियल रेन से कितना फर्क पड़ेगा, सब पर हमने काफी क्रिटिकल क्वेश्चंस उठाए सरकार को. बट टुडे, टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, वी हैव अमंग्स अस एक ऐसी पॉलिसी जो एक बहुत पिविटल रोल प्ले करने वाली है फॉर दिल्ली'स फ्यूचर. दिल्ली के पास एक नई अब ईवी पॉलिसी है. ये पॉलिसी पहले भी थी, लेकिन इस बार जो उसके चेंजेस आए हैं वो अलग क्यों हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये सिर्फ इंसेंटिव्स नहीं देती, ये एक हार्ड डेडलाइन लगाती है कि कब आईस व्हीकल्स जो हैं, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स हैं, फेज आउट हो जाएंगे दिल्ली से. ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि अगर एक बड़ा चेंज दिल्ली में आया था सीएनजी पॉलिसी के चक्कर में, सीएनजी पॉलिसी के थ्रू जो शीला दीक्षित लेकर आई थी, तो ईवी पॉलिसी उससे ज्यादा या डेफिनेटली उससे कम इम्पैक्ट नहीं लाने वाली है. और वो लेकर आई हैं रेखा गुप्ता, जो हमारे साथ आज बैठी हुई हैं. वेलकम टू द प्रोग्राम मैम.
3: थैंक यू सो मच.
1: आई हैव टू से दिस आउट राइट इन द बिगनिंग कि हमने साल भर आपसे बहुत क्रिटिकल सवाल पूछे. कोई और होता तो शायद इस इंटरव्यू के लिए आज अग्री नहीं करता, लेकिन आप यहां बैठी हैं, हमारे सवालों का जवाब देना चाहती हैं, सो कूडोस टू यू.
3: थैंक यू.
1: मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ईवी पॉलिसी के जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, पॉलिसी का जो है इसके बारे में, इवन जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने काफी प्रेस करा है, काफी आपको लोगों ने बताया होगा, फीडबैक जो हमें भी मिल रहा है, हम जितने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं सबने काफी अच्छे से रिसीव करी है ये पॉलिसी. क्वेश्चन मार्क अब इम्प्लीमेंटेशन पर है. और मेरे रिसर्च के हिसाब से तीन चीजें हैं जिस पर ये इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है. नंबर एक, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसे बढ़ाकर लाएंगी. नंबर दो, क्या आप ईवी जो व्हीकल्स हैं वो प्रोवाइड कर पाएंगी. और नंबर तीन, क्या आप ईवी व्हीकल्स वो जो हैं सही दाम पर, एक कंपेटिटिव प्राइस पर लोगों को दे पाएंगी. पहले वाले से शुरू करते हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या आपके एग्जीक्यूशन प्लान्स हैं?
3: ये बात बहुत सही है सोनल, कि इस ईवी पॉलिसी की सक्सेस बहुत बड़ी मात्रा में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, और वी आर रेडी फॉर दैट. हमने पूरी तरीके से उसको प्लान किया, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर है उसको पार्टी बनाया. वैसे तो जनरली लोग अपने प्राइवेट व्हीकल के लिए घरों से ही चार्जिंग करता है मैक्सिमम, पर फिर भी पब्लिक प्लेसेस पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसमें हमने ओईएम्स को इन्वॉल्व किया है, उसमें हमने सोसाइटीज के लिए, उसमें सरकार के द्वारा डीटीएल, हर एक एजेंसी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में मदद करे। और उसके लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंटली हमने सिंगल विंडो सिस्टम, ताकि लोग इसमें जो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें ईवी के लिए, उसमें उनको कहीं पे भी हर्डल फेस ना करनी पड़े। सरकार उनको पूरी तरीके से फैसिलिटी देगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस देगी, मोटिवेट करेगी, सपोर्ट देगी। और अभी वर्तमान में 9000 चार्जिंग प्वाइंट हमारे पास हैं। हमारा टारगेट 32000 तक जाने का है, और उसके लिए लगातार हमने उसको नोडल एजेंसी डीटीएल को बनाया है, हम काम कर रहे हैं। ओईएम्स को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर किया है कि उनको भी अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, इवन सोसाइटीज को, और कॉमन प्लेसेस पे भी हम इसको लगाने वाले हैं। तो मैं श्योर करती हूं दिल्ली की जनता को कि आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है।
1: जी, पॉलिसी में लिखा है कि 32,000 चार्जिंग पॉइंट्स बनेंगे मार्च 2030 तक। अब चार्जिंग पॉइंट्स के लिए आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देना नहीं होता है, आपको लैंड भी प्रोक्योर करनी होती है। और दिल्ली बहुत ही पिक्यूलियर स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है। लैंड कई बार आपकी नहीं है, कभी एमसीडी की है, कभी किसी और अथॉरिटी की भी है, कभी एनडीएमसी की है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये नंबर रीच हो पाएगा?
3: मैं आपको इस बात को जरूर ध्यान दिलाऊंगी कि जब बात होती है कि डबल इंजन सरकार की, आज दिल्ली स्टेट में जो गवर्नमेंट है, सेंटर में, स्टेट में, एमसीडी में, सभी एजेंसीज एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं। और जब हमने आरोग्य मंदिर खोले तो हमने बाकी एजेंसीज की लैंड को भी यूटिलाइज किया, इवन डीडीए, एनडीएमसी, ड्यूसिप, सबने अपनी लैंड दी। और इसी तरीके से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हमने लैंड ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कर चुके हैं। एजेंसी से वो जमीन लेना, किसके जिम्मे क्या काम होगा, एवरीथिंग इज प्लान्ड। और कहीं पे भी एटलीस्ट लैंड की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और ये सारा काम कोई एक दिन में नहीं हुआ है, एक साल से इस पॉलिसी पे काम किया जा रहा है। डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यहां तक कि जीरो से लेकर के एंड पॉइंट तक, ए टू लेकर जेड तक, सारे के सारे कामों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जहां हमने अपनी पॉलिसी में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा, तो वहां हम उस बैटरी के डिस्पोजल की भी बात कर रहे हैं, ई वेस्ट की भी बात कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर हमको ई वेस्ट डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, उसके लिए भी आज से काम हो चुका है।
1: जी जी, पूरी पॉलिसी में करीब 7000 करोड़ की बात हुई है, जो आप एक तरह से वेवर दे रही हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो उसमें 8000 करोड़ और हैं। टोटल 15000 करोड़ की ये स्कीम है। इसमें से आप क्या करेंगी कि ये टू व्हीलर्स हैं बेसिकली ईवी व्हीकल्स, वो अफोर्डेबल हो जाएं? क्योंकि अभी देखिए क्या हो रहा है, अडॉप्शन में आपको कहां दिक्कत आएगी कि जो टू व्हीलर चलाने वाले लोग हैं, वो जो एक आइस व्हीकल खरीदते हैं या वो पेट्रोल या डीजल लेते हैं, वो कम दाम पर आती है, आपकी ईवी जो है वो महंगी है। इसमें से क्या वो मैच कर पाएंगी? क्योंकि अडॉप्शन तो तभी होगा, आदमी खरीदेगा तभी जब उसे लगेगा कॉस्ट बेनिफिट मिल रहा है।
3: देखिए, एडॉप्शन जो है बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एडॉप्शन इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी आसानी से वो सब्सिडी का जो कैश बेनिफिट है वो कस्टमर तक पहुंच पाता है। और हमने अपनी इस पॉलिसी में खाली सब्सिडी नहीं दी, स्क्रैपिंग का भी इंसेंटिव दिया है। तो ये टू वे चीज है। और फिर जो इंसेंटिव है वो डीबीटी के माध्यम से कस्टमर को मिलने वाला है, वो भी टाइम बाउंड मैनर में। आपको अपनी आरसी लेने के 30 दिन के अंदर अप्लाई करना है और 60 दिन के अंदर आपको वो कैश जो डीबीटी पहुंच जाए, ये हम एंश्योर करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो इस ईवी पॉलिसी में लाई गई है, वो एडॉप्शन के लिए बहुत ही परफेक्ट है, लोगों के लिए मोटिवेटिंग है कि आपको सब्सिडी भी मिल रही है, आपको स्क्रैपिंग वैल्यू भी मिल रही है। और जब एक एक व्हीकल पे, यानी टू व्हीलर का अगर मैं एग्जाम्पल लूं, तो 30000 रूपये आपको सब्सिडी दे रहे हैं, जो कि पूरे देश में कहीं नहीं है इतना बड़ा अमाउंट सब्सिडी का। फिर स्क्रैपिंग पे हम 10000 रूपये दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब रोड टैक्स माफ है, रजिस्ट्रेशन फी माफ है, आपको स्क्रैपिंग मिल रहा है, आपको सब्सिडी मिल रही है, तो हर कोई लेना चाहेगा। इस दिल्ली शहर के लिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है उतनी यहाँ की जनता की भी है, तो हम मैंडेट भी कर रहे हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं।
1: अगर हम लास्ट पोल्यूशन रिपोर्ट उठाएं, टेरी की रिपोर्ट ही ले लेते हैं, सरकार भी उसी को देखती है, उसके बाद से कोई कॉम्प्रिहेंसिव पोल्यूशन रिपोर्ट बनी भी नहीं है मेरे ख्याल से। उसमें अगर आप उस रिपोर्ट को देखें तो करीब 46% दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स से आता है, जिसको आपने इस पॉलिसी में काफी अच्छे तरीके से टैकल करा है, आपने काफी इंसेंटिव्स दिए हैं, एंड देयर इज अ डेडलाइन कि अगले साल से स्टार्टिंग जनवरी ऑफ 2027 देयर विल बी अ फेज आउट, नई थ्री व्हीलर्स नहीं रजिस्टर होंगी, टू व्हीलर्स नहीं रजिस्टर होंगे, वो सारे आपके आपने बताई है। लेकिन इसमें से 33% अभी भी जो पॉल्यूशन आता है वो कमर्शियल ट्रक्स का है, उस पर आपकी ये पॉलिसी इतनी अग्रेसिव क्यों नहीं हो पाई?
3: दो कारण है इसमें। एक तो हमारी ये जो पॉलिसी है वो कॉमन मैन ओरिएंटेड है, उसमें जो बड़ा सेगमेंट, जैसा आपने टैरी की स्टडी पे बताया कि जो बड़ा सेगमेंट अगर हम पॉल्यूशन को समझें कि जो एमिशन फ्री की तरफ हमें जाना है, तो उसमें बड़ा सेगमेंट है टू व्हीलर का और थ्री व्हीलर का, उसके बाद में 46% आप ही ने बताया, और उसके बाद 33% है जो N2 हमारे ट्रक्स हैं। N2 ट्रक्स का 33% इन्वॉल्वमेंट हम मानते हैं, तो हमने उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि जो 1 जुलाई टू 30 सितंबर जितने भी N2 ट्रक्स अपने आप को ईवी में कन्वर्ट करेंगे, उस अर्लियर जो पहले के शुरू के 1000 ट्रक्स को हम दिल्ली में 24 आवर्स का जो नो एंट्री जोन था उसमें अलाउ करेंगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि स्टेक होल्डर ने भी माना और वो इस बात पे राजी हुए कि हाँ ये हमारे लिए बेनिफिट है। सेकेंडली, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी इसमें बहुत सारे रिलीफ दिए जा रहे हैं जो दिल्ली NCR के पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए है, कि ये N2 व्हीकल्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से 8% OEMs के माध्यम से डिस्काउंट दिया जा रहा है और 5% जो है उनको इंटरेस्ट में वेवर दिया जा रहा है, ताकि ये जितने लोग भी N2 ट्रक्स के मालिक हैं उनको ये बेनिफिट मिले और वो भी ईवी पे आए।
1: अब मैं N2 के लिए जस्ट क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि ऑडियंस को शायद समझ में आया, N2 आपके N1 हो गई आपके, वो छोटा हाथी जिसे बहुत बोला जाता है कॉमनली दिल्ली में, और N2 आपकी हो गई जो बड़ी कार्गो ट्रक
3: बड़ी होती है, जो 3.5 टन से 12 टन तक का वेट लेकर के चलते हैं, दैट इज N2
1: जी। बट मैम ये बात आप और हम दोनों जानते हैं कि जितनी हमारी दिल्ली में गार्बेज कलेक्शन ट्रक्स हैं, जो पुरानी ड्रग्स हैं, जो चाहे दिल्ली पुलिस यूज कर रही हो, जो पुरानी MCD की ट्रक्स हैं, जो बाकी वाटर स्प्रिंग एक्सेट्रा के लिए भी जो यूज होती है, असली पोल्यूशन तो इतनी पुरानी है वो उन्हीं से निकलता है, उस पर आपको नहीं लगता है कुछ और देना चाहिए था?
3: आपको ये जानकर के खुशी होगी और दिल्ली की जनता को भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये पॉलिसी केवल पब्लिक के लिए नहीं है, ये केवल प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए नहीं है, सरकार ने भी पूरी तरीके से इसको फॉलो करने के लिए हर चीज को अडॉप्ट किया है। हमने दिल्ली में जो मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए MRS मशीनें खरीदने के लिए जो टेंडर लगाए वो भी दैट इज ओनली फॉर ईवी व्हीकल, हम ईवी ही ले रहे हैं। हमने अपने मैंडेट में ये भी रखा है दिल्ली सरकार भी जो भी नए व्हीकल जो है परचेज करेगी या लीज करेगी वो सब ईवी होने चाहिए। आज की डेट में हमारे वाटर स्प्रिंकलर हो, हमारी MRS मशीनें हो या जो भी अदर व्हीकल्स हैं, उन सबको सरकार भी ईवी की ओर जा रही है, अपने प्राइवेट व्हीकल भी हम लोग ईवी खरीद रहे हैं, तो कहीं से कहीं तक भी 100% और हम सब मिलकर के, वो प्राइवेट स्कूल्स हो, वो हमारे ट्रक्स हो, टू व्हीलर्स हो, थ्री व्हीलर्स हो, गाड़ी हो, सब ने मिलकर के जब ये ठान लिया है कि दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करना है, तो उसमें दिल्ली सरकार भी एक बड़ी यूनिट है और हम अपने सारे व्हीकल्स को ईवी की ओर लेके जा रहे हैं।
1: ग्रिड इतना पावरफुल है कि इतना चार्जिंग प्रोवाइड कर पाएगा हमारा?
3: ये भी एक और डायमेंशन है जिसमें कि पूरी तरीके से हमारे ग्रिड्स, हमारे सब स्टेशंस को मजबूत किया जा रहा है, उसका भी लॉन्ग टर्म प्लान हमने बनाया है कि पीरियोडिकली हम उस पर कितना खर्च करने वाले हैं, अपने सब स्टेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी नो डाउट। आज यदि हम 9000 मेगावाट पे खड़े हैं तो हमें ये डिमांड लगातार बढ़ेगी, तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है उसको हम कर रहे हैं, और दिल्ली की जनता को कहीं पे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये सारे डिपार्टमेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं और उसको काम करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है।
1: आपने विंटर पॉलिसी की बात करी तो उस पर आ जाते हैं। आपने एक विंटर पॉलिसी निकाली है जिसमें अब मैंडेटेड रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। अभी तक ही ग्रैप पर डिपेंड करता था, जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा जाते थे तो वो पॉलिसीज लगती थी, जब नहीं थे तो वो रिस्ट्रिक्शंस हट जाते थे। तो क्या आप ये समझना चाहिए कि ये पॉलिसीज रहेंगी फ्रॉम नवंबर 1st टू फरवरी 28th और ग्रैप अब नहीं लगेगा?
3: देखिए, पिछले साल की वर्किंग में हम ये समझ पाए कि ये ग्रैप जो है कभी दो दिन लग गया, एक दिन छूट गया, फिर इस तरीके से लगातार दिल्ली के लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, ना काम हो पाता है ना ही पॉल्यूशन पे कोई इफेक्टिव रिजल्ट आता है। इस बार हमने बहुत ही टाइमली यानी कि जुलाई माह में ही विंटर एक्शन प्लान अनाउंस किया है, जिसमें कि डेट वाइज हमने ये बताया है कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दिल्ली के लिए बता दिया गया है कि आपको पीयूसी के बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा, पूरे साल नहीं मिलेगा, उस टाइम पीरियड में भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको वर्क फ्रॉम होम की बात की गई है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में आप उस समय नहीं कर सकते आउटडोर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। आप
1: 10th ऑफ दिसंबर से जनवरी 20th तक कोई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट बैन है,
3: कंप्लीट बैन होगा। और इसी तरीके से ग्रैब भी समझ लीजिए कि ये नोटिफाई हो गया है, इसके बाद अलग से कोई और सूचना आपके पास नहीं आएगी। उस दौरान जो भी एक्टिविटीज बैन थी वो आप नहीं कर पाएंगे,
1: पर बाकी के साल में जो ग्रैब की एक्टिविटीज है वो चलती रहेंगी,
3: वो एज इट इज
1: चलती रहेंगी। लेकिन मैम, हम क्योंकि ग्रैप की बात कर रहे हैं, आई हैव टू आस्क यू दिस। ग्रैप में प्रॉब्लम ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, राइट? आपके पास दिल्ली पुलिस नहीं है, वो जाके सड़कें आप सड़कों पर गाड़ियों को नहीं रोक पाती हैं, आप कंस्ट्रक्शन पे बैन्स नहीं लगा पाते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट आते हैं, कैसे प्रिवेंट करेंगी?
3: देखिए, जब इतना बड़ा प्लान हम लेकर के आए हैं और इतनी सीरियसनेस हर लेवल पर है, दिल्ली सरकार के लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, तो हमने सारी एजेंसीज को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उस तरीके से तैयारी शुरू की है। हमने अपनी एजेंसीज को स्ट्रेंथन किया है, हमने लोग रिक्रूट किए हैं, ऑफिसर्स रिक्रूट किए हैं जो कि इस पूरे के पूरे प्लान को ऑब्जर्व करेंगे, उस पर जो कार्रवाई करनी है उन सबको करेंगे। पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, हर व्यक्ति उसके ऊपर काम करेगा और पूरी सख्ती के साथ में हम जितनी भी नोटिफिकेशंस जारी हुई हैं उसको हम लागू करेंगे।
1: आप ऑप्टिमिस्टिक हो रही हैं, पर दिल्ली के लोग जुगाड़ू हैं। ऑड एंड इवन लगा था, सबने अपने घर में एक एक गाड़ियां रख ली, अब आपने ईवी करी है, सब बोलेंगे सेकंड कार ईवी कर लेते हैं, पहली कार तो अभी भी ईवी नहीं करेंगे। लोग कुछ ना कुछ तो पेज ढूंढ लेते हैं। देखिए, दिल्ली के लोग अपना दिमाग खूब लगाते हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोऑर्डिनेशन कैसे होएगा? आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम दैट यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर दिल्ली पुलिस, तो क्या बातचीत होती है बैक चैनल में? आप कैसे इंश्योर करेंगे इन्फोर्समेंट हो, क्योंकि उसके बिना ये पॉलिसी नहीं काम कर सकती।
3: हमने पीछे ही अपनी डीपीसीसी को ऐसे वॉलंटियर्स लगाए, ऐसे हमने लोग अडॉप्ट किए वहां पर, जो कि पूरी तरीके से वायुदूत का हमने उनको नाम दिया, जो इस काम को देखरेख करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया कि हमारी सारी एजेंसीज इसमें लगने वाली हैं और हर तरीके से, चाहे हमारा पीडब्ल्यूडी हो, चाहे हमारा एनवायरमेंट विभाग है, इस काम को करने वाले हैं। और पुलिस हो, ट्रैफिक हो, हर एजेंसी को हमने इस कॉमन एजेंडा पे लेके आए हैं, सबको इसे फॉलो करना होगा। और दिल्ली का पॉल्यूशन केवल सरकार की प्रॉब्लम नहीं है, जनता की भी तो प्रॉब्लम है। आपने कहा कोई व्यक्ति दो गाड़ी ले सकता है, जरूर रख सकता है, पर एट ए लार्ज हमने जो ईवी पॉलिसी दिल्ली में लॉन्च की है वो उस मध्यम वर्गीय लोगों के लिए की है जो टू व्हीलर पे चलता है, जो 30 लाख से नीचे की गाड़ी लेके, एक सिंगल गाड़ी ही उसका अपना जिंदगी भर की कमाई होती है जिसको वो लेके चलता है। हो सकता है घर में चार गाड़ी हो सकता है किसी के लिए ईवी की ऑप्शन एक सेकेंडरी ऑप्शन हो सकती है, जरूर हो सकती है, हर वर्ग का व्यक्ति यहां रहता है। परंतु एट ए लार्ज हमें लोगों को उस तरफ मोटिवेट करना है, उसी के लिए हम मैंडेट भी लाए हैं और वही हमारा प्रयास भी है। और व्यक्ति प्रयास करते हुए इसको बेहतर, खूब से बेहतर की ओर लेके जाने का हमारा निश्चय है और वो हम कर रहे हैं। हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीतियां भी स्पष्ट है।
1: मैम, आई लव दैट यू आंसर ऑल क्वेश्चंस विद अ स्माइल ऑन योर फेस। आप ऑप्टिमिस्टिक बहुत हैं इसके बारे में, तो एक ऑप्टिमिज्म ही नंबर मुझे दे दीजिए कि लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आपके हिसाब से आफ्टर ईवी पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड, हम 27 का नंबर लेकर चलते हैं जनवरी, हाउ मच ऑफ पोल्यूशन विल कम डाउन?
3: आप ये देखिए, परसेंटेज में या टाइम में अगर हम पॉल्यूशन को बांधेंगे तो मैं यही कहूंगी कि पॉल्यूशन तो भाई बंधने वाली चीजों में तो नहीं है। इस ईवी पॉलिसी के साथ और ईवी पॉलिसी के अलावा भी जो मेजर्स हम लोग कर रहे हैं, हम 70 लाख पेड़ पौधे इस एक साल में लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ईवी पे लेकर के जा रहे हैं, हमने डस्ट मिटिगेशन पे बड़ा काम किया है, और इस सब चीजों को जोड़ते हुए जब सारी चीजें अलग अलग डायमेंशन में काम करते हुए भी हम जब एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी तादाद में जनता ईवी को अडॉप्ट करना शुरू करेगी, उतना ही धीरे धीरे करके बाकी सारे एफर्ट्स करते हुए हम पॉल्यूशन को कम करते हुए जाएंगे। आज पूरी तरीके से दिल्ली हर सेगमेंट पे काम कर रही है, हर सेक्टर पे काम कर रही है।
4: आपके दिमाग में कि इतना परसेंटेज होगा, कैलकुलेशन करा होगा,
3: जब पॉल्यूशन
4: आपके दिमाग में होगा कि 29 के बाद आप देखेंगे डिप होना शुरू हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा पर डिप होना शुरू हो जाएगा।
3: क्या आप किसी भी एक दिन में आप ये बता सकती हैं कि पॉल्यूशन कितनी मात्रा में आपके पास आ जाएगा, किस दिन कितना होगा? क्या इस सवाल को आप बांध सकती हैं, आप मुझे बता सकती हैं कि इतना पॉल्यूशन होगा? आप कहेंगे इतना इस दिन होगा, तो मैं कहूंगी इतना इस दिन कम हो जाएगा।
4: नहीं, पर आपके दिमाग में एक गोल होगा ना कि इस साल तक मेरे फर्स्ट टेन्योर, ये बता दीजिए, चलिए रेखा गुप्ता का फर्स्ट टर्म एज चीफ मिनिस्टर एंड होते होते
3: ये सवाल आपने मुझसे पहले भी पूछा था, जब आप मुझे समय में बांधना चाहती थी तब भी मैंने कहा था कि बोलूंगी कम और काम ज्यादा करके दिखाऊंगी। मैं आज भी कह रही हूं कि मुझे वायदे बड़े नहीं करने, काम ज्यादा करना है। जिस एक साल की बात मैं कह रही हूं, जो आपने मेरे मुख्यमंत्री बनते ही मुझसे प्रश्न किए थे, आज यहां मैं बैठ करके आपको उन सारे सवालों का जवाब दे रही हूं कि मैंने क्या क्या किया। मेरे हाथ में अपना काम करना है, दिल्ली को बेटर फ्रेमवर्क में लेके आना है, उन पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूशन को करना है, मेरा दायित्व है। उसके बाद में रिजल्ट आना जनता पे, लोगों की इन्वॉल्वमेंट पे और नेचर पे डिपेंड करता है। पर एक भी सेक्टर छूटा नहीं है जिसपे हम काम कर रहे हैं। हमने कूड़े के पहाड़ कम किए, हमने वाटर बॉडी को रिवाइव किया, हमने वॉल टू वॉल रोड्स बनाकर डस्ट मिटिगेशन किया, हमने प्लांटेशन के साथ में ग्रीन कवर बढ़ाया, हमने फॉरेस्ट नोटिफाई किए, हर एक सेगमेंट पे काम हो रहा है। तो दिल्ली आगे बढ़ रही है, दिल्ली पॉल्यूशन कम करने की दिशा में रोज एक कदम आगे बढ़ाती है।
4: और मैंने इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द इंटायर इंटरव्यू में मैंने आपसे बोला था कि मैं ये बेबाक बोल सकती हूँ दैट इट्स अ गुड पॉलिसी इफ इम्प्लीमेंटेड वेल। तो मैं यही जानना चाह रही हूं कि इससे पहले भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन कॉन्क्रीट एक्शन तो तभी माना जाएगा जब पोल्यूशन कम होगा, आई एम श्योर। ये सब
3: तो
4: करने
3: आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, हम लोग देखते हैं, अगर कम होता है वो भी समझ में आएगा और कहां कमी रहती है तो उसके आगे बढ़ेंगे। आज जितना हम कर रहे हैं, क्या पिछली किसी सरकार ने इतना किया? ऑड इवन, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, इंजन ऑफ, इसके अलावा क्या किया पिछली सरकारों ने? ईवी पॉलिसी लेकर के आए पर उसकी सब्सिडी नहीं दी, उस सब्सिडी को भी हमारी सरकार ने आने के बाद पे किया है। अगर हम चाहते तो वो पेमेंट ना करते पिछली सरकार के टाइम की, पर जनहित में 45 करोड़ रुपए वर्तमान की सरकार ने पिछली सरकार की लायबिलिटी को पे किया। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इस शहर को बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि दिल्ली की जनता जो चाहती है हम वो काम कर रहे हैं, आज एक्चुअल में ये एफर्ट हो रहे हैं।
4: आई अग्री विद यू मैम, आई अग्री विद यू ऑन वन थिंग कि आप इस समय बहुत ही यूनिक टाइम पे चीफ मिनिस्टर बनी हैं। दिल्ली सरकार बीजेपी की है, नेबरिंग स्टेट्स बीजेपी के हैं, एलजी आपका साथ देते हैं, सेंटर बीजेपी का है। यू हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रियली चेंज द फेस ऑफ दिल्ली, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। I want to understand what are your top three priorities, things that you want to leave as Rekha Gupta's legacy. Ki ye teen cheeze aapne badli apne samay par, jo aap karna chahti hain personally.
3: Main Delhi ki janta ke liye chahti hoon ki Delhi shahar mein waste management
4: number one
3: प्रॉपरली होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं था। आज दिल्ली शहर में यदि 14,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज जनरेट हो रहा है तो उसका डिस्पोजल केवल 6,000 मीट्रिक टन हो रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट को पूरी तरीके से इफेक्टिव करने के लिए मेरी पहली प्रायोरिटी है
4: जी।
3: सेकेंडली, हमारा जो सीवेज का सिस्टम है वो आज भी आधी दिल्ली में सीवर की लाइनें नहीं है जो कि कारण बनती है यमुना की गंदगी का। पूरी तरीके से दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज लाइनों को लाइनअप करने की जरूरत है, पूरा का पूरा सिस्टम चैनलाइज करने की जरूरत है जिससे सीवेज प्रॉपरली डिस्पोज हो और यमुना गंदी ना हो। ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, उसमें स्कूल आते हैं, उसमें हॉस्पिटल आते हैं, उसमें हमारे रोड्स आते हैं, ड्रेनेज आती है, इन सबको बेहतर करें तो मुझे लगता है कि दिल्ली वालों का दिल जरूर खुश होगा और दिल्ली के लिए मैं वो कर जाऊं जो आज तक नहीं हो पाया।
4: चलिए मैम, यू हैव अ वेरी एस्पिरेशनल एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। मैं यही कहूंगी कि दिल्ली वालों की तरफ से, मैं देखिए बाहर की हूं, मैं यहां पर काम करती हूं, मेरी कर्म भूमि है दिल्ली, मैं अपने बच्चे यहां पालती हूं, तो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी रियली वॉन्ट दिल्ली टू डू वेल। एज अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, आपको लगता है यहां की हवा ठीक नहीं है, यहां का पानी ठीक नहीं है, सड़क पर ट्रैफिक है, कई सारे लोग हैं, एक्सपैट्स भी हैं, जो अब दिल्ली में या भारतवर्ष के बारे में नहीं सोचते हैं उस तरह से, क्योंकि उनको लगता है यहां क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। उस एक चीज को अगर आप चेंज कर सकती हैं, सो आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट गेम चेंजर यू और एनीबडी एल्स कैन मेक। सो विद दैट आई लीव यू। एक आखिरी में आपसे क्या एक और चीज पूछ सकती हूं, मैंने ऑफ लेट नोटिस करा है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो गई हैं। या आई सी दैट यू आर मेकिंग रील्स, यू अप्रोच इट एंड यू हैव गॉट अ वेरी नाइस कैंडिड वे ऑफ स्पीकिंग टू पीपल। ये डिलिबरेट एफर्ट है टू रीच आउट, ये क्या सोच के कर रही हैं आप? मैंने आपसे पहले किसी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ऐसे, दे आर गुड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स मोटिवेटेड यू।
3: देखिए, मैं दिल्ली की बेटी हूं और दिल्ली की प्रॉब्लम, दिल्ली के लिए सॉल्यूशन जानती हूं और मैं जनता के बीच में से आई हूं और जनता के बीच में रहना चाहती हूं, लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन। मैं जनता की मुख्यमंत्री हूं तो लोगों के बीच में रह के उनको सुन के उनकी बातों को जान करके काम करना चाहती हूं। तकलीफ जरूर हो सकती है क्योंकि इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने किया नहीं कि आप लोगों के बीच में डायरेक्टली जाइए, उनसे पूछिए, बात कीजिए, कहीं किसी नाले की सफाई
4: सब करते थे, केजरीवाल ने भी करे,
3: किसी नाले की सफाई पे किस मुख्यमंत्री को आपने खड़े हुए देखा, कि किसी सड़क के बनने पे किस मुख्यमंत्री को खड़े हुए देखा, रात को, दिन में, सुबह, यमुना की सफाई से लेकर के कूड़ा, हर चीज जनता से जुड़ा हुआ जितने भी विषय हैं मैं उसमें इन्वॉल्व हूं, मैं उसका सॉल्यूशन चाहती हूं। जनता के साथ मिलकर के दिल्ली को बेहतर करना है, दिल्ली को संवारना है।
4: ऑल राइट, रेखा गुप्ता, गुड लक, थैंक यू सो मच, लाइक आई सेड, एनी फॉर टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस डिस्पाइट नोइंग कि हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम कर रही हैं। आई लाइक दैट, थैंक यू सो मच, दिस इज अ गुड चैट,
3: थैंक यू सो मच।
0: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
5: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
6: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-3255.

0: son had already patched up with the rebel faction, adding that she was unbothered by the resignation and remarking that some people come with baggage. Meanwhile, following Bhattacharya's exit, Mamata Banerjee initiated another reshuffle within the TMC. She authorised only Abhishek Banerjee and Derek O'Brien to handle all official communication with the Election Commission on behalf of the party.
1: एक घटना हुई है, आप देखे हैं तृणमूल भवन में, तो वहां पर उसके बाद में हमसे ममता जी की बात हुई थी टेलीफोन में, तो वो हमको उन्होंने हमको बोला कि आप दे दिए उनके हाथ में तृणमूल भवन, तो ये हमें बहुत दुख लगा क्योंकि हम तो हर रोज तृणमूल भवन में ठीक टाइम में जाते थे और ठीक टाइम जितना कि हमारा टाइम था वही टाइम पे आते थे और कल भी हम वैसे ही आए।
2: এবং আজকেই তার জন্য কাউকে পদত্যাগ করতে হলো। আসল ঘটনা তা নয়, উনি অনেকদিন ধরেই আমাকে বলছিলেন পদত্যাগ করবেন, কারণ ওনার ছেলেরা গিয়ে খেলে গিয়ে অলরেডি হাত মিলিয়েছেন। আমার তার জন্য কিছু বলার নেই, ভালো বুঝেছে হাত মিলিয়েছে, তাদের লাগেজ ব্যাগে থাকতে পারে, কিন্তু আমি তো হাত মেলাবো না। আপনারা একজন কোথায় গেলেন কি না গেলেন, আই ডোন্ট কেয়ার।
3: देखिए कोई कुछ डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन एक आदमी जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर जब थे तब सबसे बड़ा लिस्ट जिसका था इम्पोर्टेंट मिनिस्टर का, तब कोई अभिमान नहीं था, अभी अभिमान दिखा रहा है।
4: चंद्रिमा भट्टाचार्य वाज नॉट हैप्पी विद द पार्टी एंड नाउ द रिफ्ट इज देयर इनसाइड द टीएमसी। द पार्टी हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू polls. Now they are deciding in which poll they will go. It is their turn. तो उनको decide करने दीजिए किधर जाना है।
5: चंद्रिमा दी के साथ जो हुआ है इससे कोई आश्चर्य होने का बात नहीं है, यही चले आ रहा है। और आज जो चंद्रिमा भट्टाचार्य वो एक बहुत मल्टीपल टाइम्स का MLA है, मल्टीपल टाइम का मिनिस्टर है, और जो बात उन्होंने कहा कि उनका जो लॉयल्टी लेकर जो सवाल उठा है, देखिए उनका लड़का मेरा दोस्त है, हम लोगों के साथ है, तो इसका मतलब है नहीं कि आप उसका लॉयल्टी पर क्यों शक करेंगे।
0: सो ट्रबल इज माउंटिंग फॉर ममता बनर्जी विद ईच पासिंग डे एज the rebel TMC camp have already taken over the Trinamool Bhavan. And meanwhile, one of the closest aides of Mamata Banerjee, which is Chandrima Bhattacharya, has also resigned from the party, which clearly exposes further cracks within the TMC. Now, following the incident at the Trinamool Bhavan, Chandrima Bhattacharya had claimed that Mamata Banerjee called her and accused her of handing over the Trinamool Bhavan to the rebel camp. Now, Chandrima Bhattacharya said that the remark deeply hurt her and insisted that there was no need for such a statement, and that is what led to the resignation. This is what Chandrima Bhattacharya is saying. And post this, she met with the leader of opposition and rebel leader, Ritaprata Banerjee, and tendered her resignation from all the party posts. Meanwhile, Mamata Banerjee has hit back, saying that she was anyway going to resign. She had expressed her desire to resign earlier. And now, shifting focus, amid raging controversy over ethanol blended fuel, top automobile voices from the industry have defended the government and asserted that extensive testing has found no evidence that the fuel poses concerns for vehicles. The remarks were made amid an ongoing debate over the government's E20 petrol mandate. They highlighted that ethanol is used in Formula One racing cars and argued that the transition to E20 followed years of scientific evaluation and regulatory approvals. Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri also pushed back against social media claims surrounding ethanol blended fuel, saying that the government welcomes constructive criticism but not misinformation about the biofuel program. According to Government of India, more usage of ethanol fuel will cut dependence on crude imports and will shield the economy from oil shocks. It will also boost domestically produced fuel, support the sugarcane farmers, and promote cleaner transportation.
6: Ethanol ka kaam na humne invent kiya, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। जो एक हेनरी फोर्ड था, जो फोर्ड मोटर कंपनी का मालिक था, उसने उस समय गाड़ी चलाई है बायोफ्यूल से, केरोसिन से, फॉसिल फ्यूल से। भारत में अगर आ जाएं तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने। मुझे याद था जब मैं ब्राजील में राजदूत था, मैं बात कर रहा हूं 2006 से लेकर 2008, उस समय शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, शायद उससे पहले या

0: बाद में, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: जो E20 का माइग्रेशन हुआ है वो काफी कैलिब्रेटेड रहा है और काफी टेस्टिंग और सब कुछ देख के किया गया है, और उसमें काफी मतलब कि सोच समझ के सब फैक्टर्स को देख के गवर्नमेंट ने, टेस्टिंग एजेंसीज ने टेस्टिंग करने के बाद इसको लागू किया है। 2023 के बाद में जितनी भी गाड़ियां बिक रही हैं वो E23 मटेरियल कम्प्लायंट है, E20 मटेरियल कम्प्लायंट है, और उससे पहले भी जो गाड़ी थी उनके टेस्टिंग से ये दिखा कि गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप E20 डालते हैं।
2: हमने पिछले साल में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में करीब 1.5 करोड़ ऐसी गाड़ियां सर्विस की होंगी अपने हमारे मारुति नेटवर्क में, कस्टमर्स की गाड़ियां जो 2023 से पहले की थी, जो E10 कंप्लायंट थी, E20 नहीं थी
3: जी।
2: लेकिन उनमें हमने ऐसा कोई इश्यू नहीं ऑब्जर्व किया, ऐसा कोई मीनिंगफुल कंसर्न नहीं आया जो E20 से रिलेटेड हो। ये हो सकता है कि फ्यूल एडल्ट्रेशन की वजह से कोई बहुत ही लिमिटेड पंप्स, लिमिटेड सिटीज में केसेस हों, लेकिन फ्यूल एडल्ट्रेशन का कोई बिल्कुल अलग फिनोमेना है, वो इंडिया में काफी टाइम से था, अभी भी है और रेगुलरली सॉल्व होता रहता है, उसका E20 से कोई लिंकेज नहीं है।
3: देखिए, जो भी E20 लॉन्च हुआ है दिसंबर 25 में, वन नेशन वन गैसोलीन फ्यूल है ना, इसमें अलग अलग पहले कुछ रीजन्स में आया, फिर इट हैज कम टू एवरी रिटेल आउटलेट। इसकी बुनियाद जो है वो एक्सटेंसिव टेस्टिंग पे हुई है, रिगरस टेस्टिंग जो कि बोथ फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर इंजन्स पे हुई है, उसकी बेस आउटकम पे E20 हैज बीन लॉन्च्ड ऑन पैन इंडिया बेसिस।
4: So now let's take a look at Centre's 10-point rebuttal on the usage of ethanol. So the government has said that ethanol fuel is supported by scientific studies, and those were conducted before bringing ethanol in the market. And trials covered 40,000 kilometres in cars and 20,000 kilometres in two-wheelers. So that was also done. And there's no adverse impact found, only minor changes in mileage is seen. So that's what the government is saying, that it causes no harm to the engine. But yes, the mileage is impacted a bit because of the ethanol blended petrol. There's no issues related to the drivability or the compatibility that has been found, as is being claimed on social media. The government has also said that the vehicles calibrated for E20 fuel could benefit. So it could also benefit those vehicles that are meant for E20 petrol. And the ethanol does not attract bees at residual sugar is removed. So we've been seeing videos on social media claiming that because ethanol is present in the petrol, hence the cars are attracting bees. So that has that claim has also been dismissed by the government. Only 3 to 5 liters water, not 10,000 liters used for 1 liter ethanol. So that was also one of the claims which was being made on social media, which has been dismissed by the government, saying that only 3 to 5 liters of water is used for the production of per liter ethanol. Zero liquid discharge systems recycle water. So it's a zero liquid discharge system for the which is used for the production of ethanol, and the water is then recycled. Only surplus rice is diverted for production. So this is about the production of ethanol. Ethanol blend fuels are being used for decades. So India is not the first country that has implemented the usage of E20 fuel. It has been used for decades in other parts of the world as well. With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. More news and updates will continue on the other side.
5: Watching India Today.
6: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
8: The action never stops, and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.

0: case is now gathering political heat, keeping up with the probe picking pace, both now entering a crucial phase. Investigators are preparing for the next round of questioning, while key developments are also expected at the upcoming Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust meeting. Sources say the trust is set to meet soon, with the possible resignations of Champat Rai and Anil Mishra likely to figure on the agenda. The trust is also expected to deliberate on the SIT's initial findings and review the future temple operations as well. Meanwhile, police are preparing to interrogate five accused in the case. Their statements will be formally recorded, and sources say that investigators may seek police custody if required as the probe moves forward. On the political front, the opposition tirade continues to intensify. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav says that the entire country knows about the alleged theft and claims that the incident has deeply hurt the faith and devotion of millions of devotees. BJP, meanwhile, has defended the probe, asserting that corruption existed even in the past but was protected by previous governments. The party maintains that such irregularities are being exposed under BJP rule and has urged people to have faith in the ongoing investigation.
1: Ram ke naam par to vote liya, par Ram ka naam badnaam ho raha hai abhi. Abhi Kedarnath aur Badrinath mein bhi khulase hue hain ki wahan bhi chanda chori hua hai. ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं. क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में. और चंदा चोरी तो बिल्कुल साफ हुआ है, हजारों करोड़ का चंदा चोरी हुआ है उत्तर प्रदेश में, और अंदर से ये सब जानकारी आ रही है.
2: अगर वो आरएसएस और वीएचपी को जिम्मेवार ठहरा रहे लूट में, तो उनको एसआईटी ने समन करना चाहिए, उनका बयान रिकॉर्ड करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये किस आधार पे कहा. ये कहने का क्या कारण हुआ कि आरएसएस ने या वीएचपी ने इस लूट में कोई हिस्सा लिया है? और अगर ये बयान सिरे से झूठा है तो सनसनीखेज और असंतोष और गुस्सा भड़काने वाला बयान है, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और उनको भी दंड मिलना चाहिए.
3: चोरी, अभी आप चोरी हो रही है उधर, आपके कंट्रोल में है ना ये ट्रस्ट
4: जी.
3: हम तो नहीं है, किसी को आपने लिया ही नहीं है उसमें, आपके सब लोग बैठे हैं चोर मंडल, तो ये जिम्मेदारी आपकी है और आरएसएस ने भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. चोरी की एक्शन होगी, मीन्स क्या होगा, जो छोटी मछली है उसको पकड़ लेंगे, बड़ी मछली को छोड़ देंगे. वहाँ अयोध्या में एक प्रकार से गैंगवार चल रहा है, अंडरवर्ल्ड, एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें तान कर लोग खड़े हैं, ट्रस्ट में भी और अयोध्या में भी कब्जा करना चाहते हैं. वहाँ राम की अयोध्या के ऊपर कुछ लोग अपना कब्जा करना चाहते हैं.
5: उस मंदिर पे कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं, उस मंदिर पे कंट्रोल इस देश के लोगों का है. और जब हम सुनते हैं 40% पैसा ये चोरी हो गया या भ्रष्टाचार हो गया, ये गलत चीज है. जो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी के साथ जो ट्रस्टीज है, ट्रस्ट में जो भी लोग है बहुत पावरफुल है, उन्होंने वहां पे करप्शन किया, इसलिए हम सबकी मांग है सबके ऊपर वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए.
6: यू आर प्लेइंग विद द सेंटीमेंट, with the devotion of the crores of people of India. This is unpardonable. This is a crime. And proper inquiry should be done into it. Proper investigation should be made into it. And I think central government, it is high time central government should intervene. And the matter should not be left to the temple trust only. Government should intervene. And a high-level inquiry should be conducted into it. All the culprits should be taken into task, so that the confidence of the people will again be restored.
0: So there's a key meeting of the Ayodhya Trust on Monday, that is tomorrow. Let's understand what all can be expected. So the meeting will decide the fate of Champat Rai and Anil Mishra. The trust will consider the resignations of Champat Rai and Anil Mishra, who have resigned on moral grounds. The SIT will also present the findings so far on the donation theft. Trust will deliberate on the donation theft loopholes that have emerged so far in the investigation. The focus will be on the temple administration and also the arrangements. The trust's future course is also likely

आज हम राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन यहां कर रहे हैं। हमने 2017 में इसके लिए एमओयू साइन किया था, लेकिन 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही। कांग्रेस के असहयोग के कारण यहां का काम लगभग ठप ही रह गया, लेकिन जैसे ही डबल इंजन सरकार आई, इसका काम तेजी से आगे बढ़ा और आज हम इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं मेरी कार्यशैली, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं।

0: And we're getting some breaking news. Condom ad during T20 match sparks row. TMC MP Kirti Azhar has flagged this adult ad during live match. He has flagged this issue. He says that children were watching the broadcast. So he was watching the match along with his children. That is when this adult ad appeared in between the T20 match. And Kirti Azhar has said that are such ads apt during family viewing? So that's a big question that has been raised by the TMC MP. The TMC MP has questioned the BCCI over allowing these adult ads, these condom ads, in between the T20 match. And he says that parents are left in an awkward position due to these ads. And he's also gone on to say that he may raise this issue in the parliament as well. So social media, meanwhile, is divided over the condom controversy, family viewing or adults ad space on TV. So condom ad aired during the India-England T20, and that is what has led to the controversy. Now, Kirti Azhar, the TMC MP, has raised this issue, saying that the parents feel awkward, the children don't understand, and it's a very awkward situation that arises when these ads come on TV in between the matches. Remember, the cricket matches attract a large children audience, and that is why this very important question is being raised by the TMC MP, that should condom ads be aired during these matches, which are viewed by families together, in fact, which also comprises of children. A lot of children also watch these cricket matches. So should that be allowed? Should the BCCI allow these ads in between the matches? That's the question which is being raised by the TMC MP. Let's listen in.
1: अरे ये adult advertisement है, बच्चे अपने माँबाप के साथ देखते हैं, और ये adult advertisement वो बच्चे हैं, ना समझ हैं, 16 साल से छोटे हैं. क्रिकेट देश में धर्म की तरह माना जाता है. जब मैं देख रहा था तो उस समय 44 करोड़ लोग देख रहे थे, और उसमें एक एडल्ट एडवर्टाइजमेंट आ जाना, माँ बाप को समझ नहीं आता कहाँ देखें, बच्चे उसको समझते नहीं, पूछते हैं क्या है. शराब सिगरेट सब तो बंद हैं और होने भी चाहिए, तो फिर एडल्ट फिल्म क्यों?
0: And we're now being joined by Bhagyashree Saini, who's a child rights activist. Ms. Saini, do you think these condom ads, these adult ads, must be restricted during the live cricket matches, which are also viewed by children? Because children are a large part of the audience that views these matches. In fact, the family together views these cricket matches.
2: Yeah, very true, Anjali. The important thing is कि ये जो T20 cricket match है, जिसको करोड़ों लोग देखते हैं, तो it is very important that what we are serving on the name of ads, हम लोग content protection सिखा रहे content के नाम पे, या we are serving a pleasure. तो ये important ये है कि जो ad है, it's very important. हम लोग हमारी 10th class में देखेंगे कि बच्चों को हम लोगों ने जो sexual education है वो उन्हें देना चाहिए, बहुत जरूरी है, और उसमें contraception जो है उसके बारे में भी बताना चाहिए. लेकिन important ये है कि जो ad है उसके through हम लोग उनको ये बता रहे हैं कि contraception use करना is a good thing, उसके द्वारा STD नहीं होगा, population control होता है, या हम उसको इस तरीके से portray कर रहे हैं कि जो बच्चे जो उसका real motive है उसको नहीं समझ पा रहे, बल्कि चीजों को हम लोग sensationalize कर रहे हैं. हम लोग दिखा रहे हैं कि बच्चे उससे उत्प्रेरित हो रहे हैं, और वो पेरेंट्स हैं या वो बच्चे हैं, जब वो पेरेंट्स जिस एज में है वो उस एड को लेके अनकंफर्टेबल है, तो बच्चे जो इस चीज को बहुत पूरी तरीके से समझ भी नहीं पा रहे वो कितने अनकंफर्टेबल होंगे. तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो एड है क्या जो उसका पर्पस है उसको सर्व कर पा रहा है, या वो किसी और तरीके से ही जा रहा है. एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर आप देखेंगे इन एड्स को, तो इन एड्स में जो मैसेज सर्व करना है उससे ज्यादा आप देखेंगे कि ये इसको ऐसे सर्व करते हैं जैसे कि वो प्लेजर सर्व कर रहे हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट कॉन्डोम यू कैन यूज. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा पर्पस है वो पर्पस सर्व हो रहा है या हम सिर्फ प्लेजर सर्व कर रहे हैं.
0: Absolutely. Ms. Saini, there's another argument which is being made because the social media is divided over this controversy. Some people are also saying that these ads are necessary to give a safe sex message to the younger generation, and that is why it's absolutely fine to run these ads in between the matches.
2: It's very true. As I said, ki, ye bahut zaruri hai ki hum apne bachcho ko, jo abhi 21st century hai, jahan pe everything is very fast, and hamara jo purpose hai ki hum unko sexual education de, unko contraception ke bare mein bataye, it's very important. I do agree. But important ye hai ki kya jo uska purpose hai, ki contraception ka purpose kya hai? Ki aap condoms isliye use karenge ki aapko STDs na ho, aap पॉपुलेशन कंट्रोल करें, आप प्रोटेक्शन ले, आपको कोई ऐसी चीज ना हो. एंड इट्स अ राइट एज की हम बच्चों को बहुत अर्ली एज में समझाएं, और अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक्स में जो 10th क्लास में उसमें इसको इंक्लूड भी किया गया. बट आई एम सेइंग कि क्या हम उस चीज को जो हम लोग एड के थ्रू पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्या हम लोग उसमें प्रोटेक्शन जो हमारा मेन एजेंडा है, सेक्सुअल एजुकेशन जो हमारा मेन एजेंडा है, क्या हम उसको वो पॉटरी कर रहे हैं, क्या हम एड्स के थ्रू वो सर्व कर रहे हैं, या हम सिर्फ एड्स के थ्रू प्लेजर को सर्व कर रहे हैं, हम सिर्फ उस एड्स के थ्रू जो वो कॉन्डोम है उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ लाइन, उस लाइन को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं क्या? तो मुझे लगता है कि ऐसे एड्स कोई दिक्कत नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो उनका पर्पस है, जो उनका मोटिव है, क्या वो सर्व हो रहा है या वो किस और तरीके से जा रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये जो एड्स होते हैं बहुत ही पुअर तरीके से बनाए जाते हैं और पुअर तरीके से ये मैसेज हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे होता है कि एक चेक एंड बैलेंस इसमें होना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि क्या सही वास्तविक तौर पर जिस चीज के लिए हम लोगों ने इस एड को बनाया, क्या वो पर्पस सर्व हो रहा है।
0: तो भाग्यश्री जी, क्या आपका ये कहना है कि जो कंटेंट है एड का उसको चेंज करने की जरूरत है? कॉन्डम एड्स कैन कंटिन्यू, कॉन्डम एड्स दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो दिखाए जा रहे हैं दिक्कत उसमें है और उसको बदलने की जरूरत है।
2: देखिए दोनों चीजें हैं, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो अगर हम लोग बहुत डिसेंट तरीके से अगर कोई मैसेज क्रिएट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर पेरेंट्स अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, अगर सोसाइटी में एक मैसेज क्रिएट हो रहा है तो आई डोंट फील कि उसमें कोई इश्यू है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप बहुत डिसेंट तरीके से उसको सर्व कर रहे हैं कि जहां पे पेरेंट्स भी अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं और बच्चे भी हैं जो उनको सीखना है उस चीज को सीख पा रहे हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन होना चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी कंटेंट जो होता है वो चेक एंड बैलेंस बहुत डिसेंट तरीके से सर्व किया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें पेरेंट्स को भी इश्यू है और बच्चों को जो चीज सीखनी चाहिए उसमें उनका जो पर्पस है वो भी सर्व हो जाता है। तो जी, वेरी इंपॉर्टेंट की
0: भाग्यश्री जी, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी आपसे, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए ऐसे में? बिकॉज हमने कीर्ति आजाद जी को भी सुना, उनका ये कहना है कि बच्चे सवाल पूछते हैं व्हेन दोज एड्स कम, तो बच्चे पूछते हैं उसके बारे में, तो पेरेंट्स को उस टाइम पे क्या, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए?
2: देखिए मैं बताऊं, हमारी सोसाइटी में इट्स अ वेरी बिग टैबू कि हम लोग सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। पेरेंट्स से जब बच्चे ऐसे क्वेश्चंस करते थे, पेरेंट्स भागना चाहते हैं क्योंकि इस चीज को हम लोगों ने बहुत बड़ा इशू बना रखा है कि हाउ एज अ पेरेंट्स वी कैन टॉक ऑन सच इशूज। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें बच्चों को बहुत अर्ली एज में सही और गलत बताना है, हमें बच्चों को ये बताना है कि दिस इज अ रियलिटी ऑफ आर सोसाइटी, दिस इज रियलिटी ऑफ आर लाइफ, ये चीज एग्जिस्ट करती है और इस चीज के बारे में आपको जानने का तरीका आना चाहिए। तो उस चीज को हम लोगों को चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है। पेरेंट्स को अपने बच्चों से भागना नहीं चाहिए, पेरेंट्स को सेक्सुअल एजुकेशन में कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात करनी चाहिए, उनको बहुत डिसेंट तरीके से बहुत क्लैरिटी के साथ में अपने बच्चों को ये चीज समझाना चाहिए क्योंकि इट्स अ नॉट अ बैड थिंग, हमने इसको बहुत बड़ा टैबू बना दिया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम भविष्य में देखते भी हैं। एक लड़की को अगर हम लोग देखेंगे जब उसको इस चीज का नॉलेज नहीं होता, जब लड़की को इन चीजों का नॉलेज नहीं होता तो उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है वो बच्चा भुगतता है। तो आई बिलीव कि पेरेंट्स को इन चीजों से भागना नहीं चाहिए, पेरेंट्स को इन चीजों पे अपने बच्चों से बहुत अर्ली स्टेज में बात करनी चाहिए और अगर ये गलत चीज होती है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अर्ली स्टेज में 10th क्लास में इस चीज को इंक्लूड किया जाए।
0: जी भाग्यश्री जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो दैट वाज चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट बैकिंग द कॉन्डम एड्स बट नॉट द कंटेंट, नॉट द वे इट इज प्रेजेंटेड ऑन टीवी, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर द चेंज इज रिक्वायर्ड। द कॉन्डम एड्स आर एसेंशियली नॉट द प्रॉब्लम, द मैसेजिंग इज नॉट द प्रॉब्लम, बट द वे इट इज पोर्ट्रेड इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। इट्स एन अडल्ट एड एंड विच इज शोन इन अप्रोप्रिएटली, विच इज नॉट एज अप्रोप्रिएट फॉर द चिल्ड्रन, एंड दैट इज वेयर द चेंज इज एक्चुअली रिक्वायर्ड।

0: Now, shifting focus, we're getting some more breaking news. This is regarding the Ram Temple donation theft case. Now, Ayodhya cops recover deleted chats in the donation theft case. As per the cops, chats suggest theft of over 2 crore rupees. The cyber cell retrieves year-old deleted mobile data. The cops have recovered the data from accused's new phones, and the chats reveal alleged sharing of the stolen donation money. In February 2026, the money split dispute surfaced in the chats. The cops are verifying the bank transactions with these chat records. So fresh digital evidence has emerged in the Chanda Chori probe. So the Ayodhya police have obtained backups from the accused individual's mobile phones. The police have discovered these chat logs indicating the theft of over 2 crore rupees through the mobile data. Now, with the assistance of the cyber cell, Ayodhya police recovered data dating back a year that the accused had previously deleted. Police also recovered data from the new phones purchased by Avinash Shukla and Anukalp Mishra. These chats are between Anukalp Mishra and Lovekush Mishra, which have revealed how the stolen funds were being misappropriated and also shared among them. The chats reveal that in February 2026, Anukalp Mishra accused Lovekush Mishra of stealing a larger share of the money and failing to give him his due portion. And my colleague Santosh Sharma is now joining us with more details on this. Santosh, jo chats hain, wo recover kar liye hain police ne, aur jisme ki ye samne aaya hai ki 2 crore se zyada ki chori ki gayi thi, aur balki wo equally baata bhi nahi gaya tha, jiski wajah se kuch vivad hua tha in accused ke beech mein.
1: देखिए बिल्कुल, जो पुलिस ने इन आरोपियों का जो मोबाइल डेटा था उसका डेटा रिकवर कर लिया है और किसी के मोबाइल से 6 महीने का, किसी के मोबाइल से 1 महीने का डेटा रिकवर किया जा चुका है. और अब तक जो पुलिस सोर्सेज से जानकारी मिल पा रही है कि इनके जो चैट है उससे चैट से लगभग 2 करोड़ से अधिक की रकम जो चढ़ावा चोरी से इनके द्वारा जो चोरी की गई उसका डेटा बैकअप मिल चुका है अयोध्या पुलिस को. इतना ही नहीं, इनके द्वारा जो अविनाश शुक्ला अनुकल्प मिश्रा के द्वारा नए फोन्स खरीदे गए, इसके अलावा फरवरी महीने में जब लवकुश मिश्रा ने लैंड खरीदी थी अयोध्या के सुहावल में, एक लैंड परचेज की थी, उसी दौरान अनुकल्प और लवकुश मिश्रा के बीच में चैट पर ही पैसे के बंटवारे को लेकर झगड़ा भी हुआ, विवाद भी हुआ कि पैसा ज्यादा रख लिया है. इस तरीके की तमाम बातें अब पुलिस के सामने हैं. चैट रिकवर किया जा चुका है और कुछ और मोबाइल्स भी हैं जिनका बैकअप लिया गया है. बैकअप लेकर के जो फॉरेंसिक की टीम है उसको भी रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है. तो ये कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा किए जा रहे हैं और इस चैट के जरिए इतना जरूर हो चुका है कि ये सारे लोग एक दूसरे से मिले हुए थे, एक दूसरे के संपर्क में थे. अनुकल्प मिश्रा लवकुश मिश्रा से चैट कर रहा था, अविनाश पांडे अनुकल्प मिश्रा से चैट कर रहा था. तो ये तमाम चीजें हैं जो मोबाइल डेटा से सामने आ चुकी हैं और अब अयोध्या पुलिस के पास इस ये जांच का हिस्सा है. जी
0: जी संतोष, हमारे साथ बने रहिए. सो दैट्स अ वेरी क्रूशियल अपडेट दैट इज कमिंग टू द फोर एज फार एज द डोनेशन थेफ्ट केस इज कंसर्न. द कॉप्स हैव रिकवर्ड द चैट्स बिटवीन दीज अक्यूज इन विच इट हैज बीन रिवील्ड दैट ओवर 2 crore वॉज लूटेड फ्रॉम द डोनेशन. एंड there was also an argument between the accused over the equal share, not getting the equal share out of the stolen money. Some more news coming in on this. So the SIT probe intensifies in the donation theft

0: intensifying. The SIT probe is intensifying in the donation theft case. We've already told you about the latest update, how the chats have been recovered of the accused, in which it has been revealed that over 2 crore rupees were looted from the donation. Now, what we're also learning is that the cops have grilled the 5 accused in jail, and all of them were interrogated individually, and later on they will also be confronted.
1: चरावा चोरी के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपियों में एक अविनाश शुक्ला से पुलिस ने 13 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर पूछताछ की और चोरी की रकम से खरीदी गई ब्रेजा कार भी बरामद की। लेकिन अब बारी इस चढ़ावा चोरी के 5 अन्य आरोपियों की है, जिनसे अयोध्या पुलिस आज अयोध्या जेल में जाकर पूछताछ करेगी। इन 5 आरोपियों में रमाशंकर यादव, टिन्नू यादव, उसका भतीजा मनीष यादव, करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा शामिल हैं। इन 5 आरोपियों से पुलिस जेल में जाकर पूछताछ इसलिए करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस चढ़ावा चोरी में एक अहम किरदार निभाया, और जानना पुलिस के लिए बेहद जरूरी हो गया है कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के जिस सुनसान इलाके में अविनाश शुक्ला अपने अन्य साथियों के साथ मीटिंग करता था, वहां किस तरीके की मीटिंग, कैसे रकम का बंटवारा, किसको कितनी जानकारी थी और चोरी की गई रकम किसने कहां कैसे छिपाई, क्या खरीदा, क्या बेचा, ये तमाम बातें अयोध्या पुलिस के लिए जांच में बेहद जरूरी है।
0: माय कॉलीग संतोष शर्मा कंटिन्यूज टू स्टे विद अस। संतोष, इन 5 आरोपियों से पूछताछ की गई है पुलिस की तरफ से, इंडिविजुअली पूछताछ की गई है, क्या कोई बड़ा दावा, क्या कोई बड़ा रेवलेशन सामने आ रहा है?
1: देखिए, अभी पूछताछ हो रही है, जेल के अंदर है जो इस पूरे केस का, जो डोनेशन थेफ्ट का केस रजिस्टर हुआ, उसके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं डिप्टी एसपी रैंक के, वो अंदर हैं। सभी से पूछताछ की जा रही है। सभी आरोपी जो 8 हैं वो हाई सिक्योरिटी बैरक में हैं, सबकी अलग अलग बैरक है, उन सभी से पहले अलग अलग पूछताछ की जाएगी, और अलग अलग पूछताछ करने के बाद जरूरत पड़ेगी तो सभी 5 आरोपियों को एक साथ बिठाया जाएगा। ये जो 5 आरोपी हैं उसमें रमाशंकर यादव, टिन्नू यादव है, उसका भतीजा मनीष यादव है, लवकुश मिश्रा है, उसका साला अनुकल्प मिश्रा है, और इसके साथ ही जो 5वां आरोपी है उससे भी पूछताछ की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि 5 आरोपियों से आज पुलिस ने जेल के अंदर जाकर पूछताछ कर रही है, और इस पूछताछ के बाद माना जा रहा है कि इनमें से कुछ लोगों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी लिया जाएगा। आज की पूछताछ इसलिए भी अहम है कि इन 5ों की कड़ियां जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आई हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है। इनके बयान से जो तमाम चीजें सामने आई हैं, पुलिस के पास फैक्ट्स आए हैं, उन फैक्ट्स को क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है, और फिर उसके बाद इनको पीसीआर पर लिया जाएगा। यानी कि जैसे पुलिस कस्टडी रिमांड पर अविनाश शुक्ला को लिया गया, अविनाश शुक्ला से भी इसी तरीके से पुलिस ने करीब 3 से 4 घंटे तक अयोध्या जेल में पूछताछ की थी। उसके बाद उस पूछताछ के आधार पर पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई थी, और 13 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर अविनाश शुक्ला ने ब्रेजा कार बरामद की थी, वो इलाका बताया था। तो अब इन 5 से भी जेल में पूछताछ की जा रही है, और इनकी भी पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी में है अयोध्या पुलिस।
0: जी संतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो द 5 अक्यूज्ड आर स्टिल बीइंग ग्रिल्ड बाय द कॉप्स इनसाइड द जेल, एंड वी आर वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ दिस इंटरोगेशन, एंड वी आर ऑल्सो लर्निंग दैट all these 5 accused will also be later confronted inside the jail. Some more news coming in. The Vishwa Hindu Parishad has written to top cop over the donation theft claims and has urged the cops to record the statements of opposition leaders. The VHP is seeking statements of Arvind Kejriwal and Priyanka Gandhi. It is seeking the statements of Sanjay Singh and Ram Gopal Yadav as well. So VHP has asked the cops to verify the basis of the allegations that have been levelled by the opposition leaders. It also seeks the sources and the documents behind the donation theft. So VHP's Alok Kumar has written to Ayodhya DSP against the opposition leaders, and he has urged the cops to record the statements of these opposition leaders.

0: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
1: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
0: to live sports action.
2: To the near side corner, to wrap around, he scores!
0: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
3: All those people who think ki phiki chai peene se wo bahut healthy choices le rahe hain, ghar ka khana khane se wo kaise unhealthy ho sakte hain, un sab ko wo kafi karara jawab deti hain.
4: Zyadatar hamare parents mein maine dekha average, they have got a pouch. ठीक है, एंड बाजू पतली होती है, टांगे पतली होती है, सो दैट मींस देयर इज अ मसल वेस्टिंग. ठीक है, और आजकल ना मेरी मदर को ना सारे बोल रहे हैं, अरे तुम तो कमजोर हो गए बिकॉज उनकी ये पतली है. मैंने कहा मम्मी नहीं, आप ओवरवेट हो, पेट आपका बाहर निकला है. उस चक्कर में वो और खाना खा रहे हैं.
3: तुम्हारे जनरेशन के साथ ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. इतना ये खाना है. हमें तो ऐसा खाना मिलता था, हम खा लेते थे.
4: वो ना हालत देखो, वो ना बात का नजर. मामा बताओ, मासी का क्या हाल है, बुआ का क्या हाल है, मामा का क्या हाल है, चाचा का क्या हाल है, चाची का क्या हाल है, सबको पता चल जाए.
3: सबकी रिपोर्ट दिखाओ मुझे.
4: सत्संग कीर्तन में ज्यादातर जाते, इट्स नॉट बैड, बट उसके बाद खाते क्या है? समोसा मिल जाएगा, गुलाब जामुन मिल जाएगा, जलेबी मिल जाएगी,
3: प्रसाद में डायबिटीज मिलता है. इंडियन खाने में हमारे क्या बुराई है?
4: जिस तरह से हमारे भरवे करेले बनते हैं ना भैया, ठीक है, घंटा घंटा लग के तेल में फ्राई करके, एक बार फ्राई करके, दो बार फ्राई करके, फिर तीसरी बार जाकर के आपके सामने आता है. इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि घर का खाना हेल्दी है. प्यार पता कैसे झलक रहा है? एक चम्मच घी, दो चम्मच घी, तीन चम्मच घी, दैट्स लव.
3: Give me tips. How do I explain parents the importance of rethinking their food?
4: एक बैलेंस वर्ड ना मुझे लगता है पुरानी जनरेशन में है ही नहीं. कितना खाना है, ठीक है, हेल्दी तो केले भी होते हैं. बनाना सर हेल्दी, इसका मतलब दिन में तुम 20 केले खाओगे.
3: When you have a small kid at home,
4: yes.
3: जितने लोग वो कमिंग है, सब चॉकलेट्स लेकर आ जाते हैं. So and you are shamed for that कि कैसी माँ हो,
4: कैसी माँ हो. हाँ, बड़े होकर के तो खा लेंगे ना. आई सेड बड़े होकर के तो बच्चा अल्कोहल भी पिएगा. दे दूं अभी से क्या? हमारे अगर यहाँ पे तुम किसी को चाय के साथ मखाने सर्व कर दो तो उनको लगेगा यार सूखा सूखा सूखा सूखा.
3: माय डैड विल टेल मी, मैं तो बस क्या दो रोटी चावल खाता हूँ, दाल लेता हूँ, और जो सब्जी बनती है एक हमारे यहाँ जैसे प्रॉपर नॉर्थ इंडियन यूपी का खाना बनता है, तो एक गीली सब्जी बनेगी, एक सूखी सब्जी बनेगी, उसके साथ दाल होगी, उसके साथ अचार होगा, उसके साथ पापड़ होगा, उसके साथ आपको दो रोटी और चावल. एंड कभी कभी मैं वो खाना देखती हूँ, मुझे लगता है मैं पूरे दिन में इतना नहीं खाती हूँ जो वो एक मील में खा लेते हैं.
4: लोग समझते हैं दाल इज अ प्रोटीन. यस, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ प्रोटीन, इट इज प्रोटीन प्लस कार्ब्स.
3: Is there a way to make your शादी का खाना on what you're eating little bit healthy?
4: अगर suppose मैं घर से निकलने से पहले ही मैं दो अंडे खा करके गई हूँ, suppose, ठीक है, तो my body is satiated, उसको जो nutrients चाहिए थे वो मिल गए.
3: 3-4 बजे की मेरी craving होती है चाय के साथ, के लिए मुझे कुछ स्नैक चाहिए. पर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है ना, वो चाय के साथ नहीं जाएगा. Is there a way to make healthy choices when you're ordering food? क्या हमें cuisines कुछ हैं जो ज्यादा अनहेल्दी होती हैं, कुछ नहीं हेल्दी होती हैं? वेजिटेरियंस क्या खा सकते हैं? देयर आर सम बुरीटो ऑप्शन, ओके, देयर इज हनी ओट आल्सो, रोस्ट गार्लिक आल्सो, वाइट इटालियन आल्सो, पार्मेसान ओरिगानो आल्सो. नो, ऑफिस के डब्बे में कैसे हेल्दी खाना रखा जाए?
4: प्लीज यूज फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजीज. अगर आपको लगता है तो आपके कैंड चिकपीज आते हैं, कैंड बीन्स आते हैं, उनको यूज करो. अब मुझे पता है मैं ये सब चीज बोल रही हूँ, काफी लोगों को लगेगा
3: ये तो बिकी हुई है, इनको किसी ने पैसा दिया इसे बोलने के लिए.
4: एनीवेज मेरे पास कोई है
3: नहीं मिला. बाय द वे मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, हमें किसी ब्रांड से कोई पैसा नहीं मिला ये करने के लिए.
4: ब्रांड का नाम ले तो मैं बोलूँ ना, ब्रांड का तो मैं नाम ही नहीं ले रही हूँ.
3: हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर वर्सेस इंटरनेट. आज हमारे साथ एक इंटरनेट की ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने काफी मिथ्स बस्ट करे हैं, सिर्फ आपकी और मेरी जनरेशन के लिए नहीं, हमारे माँ बाप की जनरेशन के लिए भी. ऑल दोज पीपल हु थिंक कि फीकी चाय पीने से वो बहुत हेल्दी चॉइसेस ले रहे हैं, घर का खाना खाने से वो कैसे अनहेल्दी हो सकते हैं, उन सबको वो काफी करारा जवाब देती हैं. तो हमने सोचा आज उनको बुलाते हैं और एवरी डे के आपके और मेरे जो न्यूट्रिशन क्वेश्चंस होते हैं, डाइटरी क्वेश्चंस होते हैं, उसका हम सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे. आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारा पहला पॉडकास्ट जो था फूड पर डॉक्टर अनूप मिश्रा के साथ देखा था, lot of love came on that podcast, but also a lot of questions. कि हम इसे डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें. सो हमने आपके लिए बनाया है ये पॉडकास्ट. अगर आप एयरपोर्ट पे हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, अगर आप शादी में जा रहे हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, अगर फ्रेंड्स आर कमिंग ओवर एंड यू वॉन्ट टू सर्व देम समथिंग नाइस, हाउ डू यू मेक हेल्दी चॉइसिस, इफ यू आर गोइंग आउट टू ईट, विच क्विजीन्स आर रिलेटिवली ईजियर, एंड देन वॉट एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो, एल्कोहल के साथ क्या खाना करना चाहिए, एल्कोहल के नेक्स्ट डे क्या खाना करना चाहिए, एंड फॉर ऑल दोज पीपल जो ऑफिस गोअर्स हैं, आपको टिफिन में क्या बना सकते हैं जो क्विक एंड ईजी हो बट हेल्दी भी हो, जो आप अपने बच्चे के लिए भी लग सकें. तो ये सारी चीजें हमने सिर्फ एक पॉडकास्ट में कवर करी हैं. सो विद दैट लेट मी इंट्रोड्यूस रिति. हेलो एंड वेलकम, हाउ आर यू?
4: थैंक यू सोनल, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट.
3: सो एम आई. वेलकम टू इंडिया.
4: थैंक यू थैंक यू.
3: कैसी लग रही है आपको हमारी हवा और हमारी गर्मी?
4: इसके बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है प्लीज.
3: पर आप दुबई से आ रही हैं, आपको गर्मी की आदत होनी चाहिए.
4: नहीं यार, नहीं होती है इतनी गर्मी वहाँ पे. लोगों को पता नहीं क्यों कॉन्सेप्ट है कि दुबई में इतनी गर्मी होती है. हाँ. नहीं होती है, आपको पता भी नहीं लगता है. एंड बाय द वे, मैं वैसे भी जुलाई अगस्त सितंबर कभी दुबई में होती नहीं हूँ. आई ऑलवेज स्किप दोज मंथ्स. बट उसको छोड़ के इट्स अमेजिंग. इट्स बेटर देन हियर, ट्रस्ट मी. ये लोगों का मिथ है कि दुबई में बहुत गर्मी होती है. हाँ. उससे गर्मी तो हमारे जम्मू में है जहाँ पे मैं अभी हूँ. ट्रस्ट मी.
3: Oh God.
4: Yeah, so it's not like that, you know.
3: So इतना गर्मी नहीं है. यूरोप में तो आप जा नहीं सकते समर, क्योंकि वहां पर बहुत गर्मी है. सो आई थिंक इंडिया में ही बैठना चाहिए.
4: निकल सकते हो. निकल सकते हो, सॉरी.
3: दुबई तक जा सकते हो.
4: मॉरिशस जाओ.
3: That's also a good idea.
4: I was in
3: but ये travel का podcast नहीं है, खाने का podcast है. Let's come back to that. Let me start with the basic question.
4: Okay.
3: लोगों को ये लगता है, और मैं अपने घर में ये बहुत सुनती हूँ, ठीक है. अभी मैं कानपुर लखनऊ होकर आ रही हूँ समर हॉलीडेज बिता के वहाँ पर, तो मैंने वहाँ बहुत सुना कि तुम्हारी जनरेशन तो पिज्ज़ा बर्गर खाती है, बहुत अनहेल्दी हो तुम लोग. हमें देखो, हम घर का खाना खाते हैं उसके, इसीलिए हमारी सेहत इतनी अच्छी है.
4: ओके.
3: पर अच्छी है का मतलब है उन सबको डायबिटीज़ है,
4: ठीक है,
3: उनको हाइपरटेंशन है, उनको थायराइड है, उसमें से आधी महिलाओं के नी रिप्लेसमेंट थेरेपीज हो रही हैं.
4: ओके.
3: कोई मेनोपॉज से डील कर रहा है. Men have this massive thing कि सुबह सुबह उठ के सबको बहुत गुस्सा आता है, cortisol levels are out of control. तो ये सारी चीजें हैं, but they love to talk about कि हमारी generation
4: कितनी healthy है,
3: कि हमारी generation, मेरी generation की eating habits बहुत बुरी हैं और उनकी बहुत अच्छी है क्योंकि वो घर का खाना खा रहे हैं. तो क्या ये सबसे बड़ा myth है कि घर का खाना मतलब healthy खाना?
4: मैं ये नहीं बोलूंगी कि घर का खाना unhealthy है, but it's not ऑलवेज ट्रू कि घर का खाना हेल्दी है. जिस तरह से हमारे घर वाले बनाते हैं, बैलेंस्ड नहीं होता है. आप देखते हो ना करेले कैसे बनते हैं हमारे. करेला इज वेरी गुड, बट जिस तरह से हमारे भरवे करेले बनते हैं ना भैया, ठीक है, घंटा घंटा लग के तेल में फ्राई करके. हाँ. एक बार फ्राई करके, दो बार फ्राई करके, फिर तीसरी बार जाकर के आपके सामने आता है. राइट. सो हमारे, यू टॉक अबाउट दाल मखनी, ठीक है, लोग जब क्लाइंट्स मेरे से पूछते हैं मैम हम दाल मखनी खा लें, मैंने कहा वर्ड सुनो, दाल मखनी.
3: हाँ.
4: राइट. अब हमारे घर वाले घर पे बनाते हैं दाल मखनी, ये मैंने घर पे बनाई है, उस पे बटर कितना गया है, आप ये सब चीजें लोग ना कैलकुलेट ही नहीं करते हैं. तो घर का खाना ऑटोमेटिकली हेल्दी नहीं बन जाता है, और बाहर का खाना ऑटोमेटिकली अनहेल्दी नहीं बनता है. ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझना चाहिए. एक बैलेंस वर्ड ना मुझे लगता है पुरानी जनरेशन में है ही नहीं. मतलब माई वे और द हाईवे.
3: हाँ.
4: ये मुझे लगता है.
3: ये तो काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम है.
4: लोगों के साथ है. आप जैसे अभी बोल रहे थे कि आपके घर वालों को लगता है कि हम लोग अच्छा खाना खाते हैं. मैं अभी जम्मू में हूँ, ठीक है. सो हमारे वहाँ पे मोहल्ले होते हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि कमेंट लाइक वी डोंट स्टे इन बिल्डिंग्स, लाइक मोहल्ले, ठीक है. मुझे पता है मेरे पूरे मोहल्ले में अगर सपोज अगर इस पूरी लाइन में अगर 100 लोग रहते हैं ना, और 60 प्लस एज में ना आउट ऑफ 100 ना 90 लोगों को तो प्रॉब्लम है ही है. और जो 10 बच्चे हैं ना उन्होंने शायद से कभी टेस्ट कराया नहीं. मुझे पता है उनको भी है. राइट. 90. सो और ये लोग एक्सेप्टेंस के लिए रेडी नहीं है. उनको लगता है बीपी शुगर ये ना 60 के बाद होना ही है.
3: हाँ.
4: यार मैं जापान में थी, मेरा तो रोंगटे खड़े हो गए जब मैं वहां पे लोगों को देखती थी ना. 70 प्लस लोग, 80 प्लस लोग, वो कभी लटक रहे हैं, सुबह उठ के डांस करे, मैंने उनके साथ वीडियोस भी बनाए हैं.
3: हाँ.
4: ठीक है. एंड दे वर सो लाइवली. उनके खाने में क्या होता था, ग्रीन टी, सांचा टी अलोंग विद चेरी टमेटोज, कुछ फ्रूट्स और हमारे घर वाले जब जाते हैं, एक तो पहले जाते हैं यू नो सत्संग कीर्तन में ज्यादातर जाते हैं, इट्स नॉट बैड, बट उसके बाद खाते क्या हैं? मेरी मदर इन लॉ जाती है काफी
3: प्रसाद
4: सत्संग
3: में डायबिटीज मिलता है
4: यस ठीक है, एक तो समोसा मिल जाएगा, गुलाब जामुन मिल जाएगा, जलेबी मिल जाएगी, ठीक है, ये होता है प्रसाद, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग कि तुम ये खा ही नहीं सकते हो, ठीक है, बट जब ये तुम्हारी लाइफ का पार्ट बन जाता है ना, देन इट्स अ प्रॉब्लम. आई लव समोसास, आई ईट गुलाब जामुन, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये मेरी लाइफ का पार्ट नहीं है, ये मेरी लाइफ में डे टू डे नहीं आता है. अब हमारे घर वाले कहीं पे भी जाते हैं, उनको यही चीजें सर्व होती हैं. अब स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द स्मॉल टाउन्स, अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो, अगर तुम्हें चाय के साथ समोसे या पकोड़े सर्व नहीं किए ना, तो तुम्हारा निरादर हो रहा है, ठीक है, तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, राइट?
3: नो, उसके पहले भी शुरू हो जाता है ना. अभी मैं कितने लोगों के घर पे गई, अरे घर जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जाएंगे, मीठा लेकर चलो. एंड आई वाज लाइक, भाई मैंगो का सीजन है, मैंगो ले लो, वो भी मीठा ही है. तो वो भूल गए हैं लोग कि आप फ्रूट्स दे सकते हैं, आप फ्लावर्स दे सकते हैं, ये मीठा ले जाने का कॉन्सेप्ट क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक व्हाई यू गिफ्टिंग समबडी डायबिटीज?
4: अनफॉर्चुनेटली उनकी गलती नहीं है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया है, ठीक है. वो जैसे बोलते हैं ना, जैसे काफी आजकल एक्सपेरिमेंट्स भी आए हैं कि आप एक ऑफिस में जाते हो, जैसी बेल बजती है, दो लोग खड़े होते हैं, तीन लोग खड़े होते हैं, उसके बाद जितने लोग आते हैं वो खड़े होते रहते हैं, जस्ट विदाउट नोइंग कि क्या हो रहा है, राइट?
3: हर्ड मेंटालिटी.
4: क्योंकि क्या हर्ड मेंटालिटी, हमारे पेरेंट्स के साथ या पुराने लोगों के साथ भी यही हो गया है, कि भैया किसी के घर जाना है वो ऑटोमेटिकली मिठाई लेंगे, किसी के घर जाने वो ऑटोमेटिकली उनको सर्व करेंगे. जैसे हमारे अगर यहाँ पे तुम किसी को चाय के साथ मखाने सर्व कर दो, तो उनको लगेगा यार सूखा सूखा सूखा सूखा, ये सूखा,
3: I heard it so many times,
4: ये सूखा वर्ड, मतलब उनको चाहिए तेल में निकला हुआ. इट्स लव, यू कांट से तेल और फैट, इट्स लव, राइट? तो प्यार मुझे लगता है फूड से ही लोग जुड़ते हैं. जैसे मेरे घर वाले, मेरे बच्चे भी नाना नानी के पास हैं, प्यार पता है कैसे झलक रहा है? एक चम्मच घी, दो चम्मच घी, तीन चम्मच घी, दैट्स लव. मैं कहीं पे भी बाहर जा रही हूँ तो मेरे पापा चोरी से बच्चों को चॉकलेट दे रहे हैं, लव.
3: ओह गॉड,
4: मैंने कहा वर्कआउट करो इनके साथ, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं किया, राइट? फॉर देम यू नो, वो उसको समझते नहीं है शायद से. मैं जब ग्रैनी बनूंगी, राइट, आई विल मेक श्योर कि मैं उनको सुबह वर्कआउट के लिए लेकर के जाऊं. आई विल मेक श्योर दैट आई फीड माई ग्रैंड किड्स हेल्दी फूड. I'll
3: yes.
4: make sure.
3: Yes.
4: Right?
3: And that is true. And it's particularly difficult when you have a small kid at home.
4: Yes.
3: Jitne log wo are coming and you know, you feel so nice. They mean well. They're coming to see you. They want to wish well to your child. Wo sab chocolates lekar aa jate hain. Aur mujhe sabse bola lagta hai, no S-U-G-A-R, no S-U-G-A-R. Main puri trip mein yahi bolti rahi hu ki bhai nahi de sakte, nahi de sakte. So, and you are shamed for that. Ki kaisi maa ho
4: to? Kaisi maa ho, haan. Kabhi kabhi dene se kya hota hai?
3: Haan.
4: Aur main ye kitni baar bolti hu, jaise कई लोग मेरे को टॉन्ट भी मारते हैं, बड़े होकर के तो खा लेंगे ना. आई सेड, बड़े होकर के तो बच्चा अल्कोहल भी पिएगा, दे दूं अभी से क्या? बच्चों की वाटर बॉटल में डालना शुरू कर दें कि बड़े होकर के बच्चा वोडका पिएगा, चलो अभी से दे दें? नो, वी डोंट.
3: आई एम गोना यूज दैट लाइन, आई एम गोना यूज दैट लाइन, या
4: या या, राइट? यू ऑलवेज प्रोटेक्ट योर किड्स, राइट? जो चीजें उनके लिए खराब है. ऑनेस्टली बताओ, मुझे लगता है आजकल इतने लोग डायबिटीज से मर रहे हैं, ठीक है, मर रहे हैं, राइट? और लोग उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि इससे हो गया, और लोगों को पता नहीं चलता डायबिटीज से मरा है. बिकॉज अल्टीमेटली जब आपकी डायबिटीज बढ़ती है, आपकी किडनीज खराब होती है. पूरी दुनिया बोलती है प्रोटीन मत खाओ, किडनीज खराब हो जाएगी, बट आपको पता है मैक्सिमम डायबिटीज में जो डेथ्स होती है, इट्स बिकॉज ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी.
3: यस,
4: किडनीज खराब की वजह से. उसके बारे में नोबडी टॉक्स. कोई नहीं बोलते कि शुगर मत खाओ, तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी. सुना आज तक कभी? भैया प्रोटीन का तुमने दो अंडे खा लिए तो घर वालों को लगता है भैया अब मेरी बेटी भैया गई हॉस्पिटल, इसने दो अंडे खा लिए, राइट? सो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है लोगों के अभी भी बहुत पुराने हैं, मतलब अवेयरनेस बहुत ज्यादा चाहिए.
3: या एंड यू नो आई कम टू थिंक ऑफ इट, समटाइम्स आई फील उनकी गलती नहीं है. आई थिंक मेरे पेरेंट्स की जनरेशन वो थी जिनके पास वॉशिंग मशीन्स नहीं थी, जिनके पास कपड़े धोने की लिए आपको जाके मेहनत करनी पड़ती थी, राइट? आपको अगर चटनी पीसनी है तो मिक्सी से नहीं आ रहा था, सिलबट्टे पर ही काम हो रहा था, राइट? आप बैठ के घंटों यूवर झाड़ू पोछा घर में हो रहा था. वो लाइफस्टाइल सिर्फ एक जनरेशन में इतनी ड्रामेटिकली शिफ्ट हो गई है दैट वो सेम खाना खा रहे हैं,
5: when their lifestyle is not even 1/10 of what it used to be.
4: Absolutely.
5: So jab wo compare karte hain ki humne tumhe bhi to bachpan mein yehi kara tha, I tell them, but listen, I was, hamare ghar mein khand hote the, jaise aap bata rahi hai na mohalle, main bhi waisi mohalle mein, you know, paida hui hu, Kanpur mein. And वहां पर ऐसी होती थी, हम दिन रात ऊपर नीचे कर रहे हैं. अब हमारे बच्चे क्या अपार्टमेंट में है, वो मैक्सिमम एक रूम से दूसरे रूम जा रहे हैं.
4: Yes.
5: और आई हैव टू फॉर एक्सरसाइज सेंड देम आउट, इट इज एन एफर्ट.
4: और वो भी लिफ्ट से,
5: वो भी लिफ्ट से जा रहे हैं. एंड दैट ऑल्सो इज अ, यू हैव टू पुट इन एन एफर्ट फॉर एक्सरसाइज. आपकी दिनचर्या में वो एक्सरसाइज नहीं हो रही है. तो लोग ये नई बात समझ पाते हैं और इसको पेरेंट्स को समझाना तो भाई बहुत मुश्किल है. सो गिव मी टिप्स, हाउ डू आई एक्सप्लेन पेरेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ rethinking their food, because वो पूरा rethink करने की ज़रूरत है. उनको सिर्फ वो जो खा रहे हैं उसमें you know फेरबदल नहीं करना है, उनको अपनी lifestyle में पूरी तरह से एक rethink चाहिए.
4: अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम लोग यूजुअली यही सोचते हैं कि सिर्फ हमारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं. आपको पता है हमारी जनरेशन भी काफ़ी ऐसे ही है, बिकॉज आई हैंडल सो मैनी पेशेंट्स इन अ डे, राइट, जो कि हु आर इन देयर 40s, राइट, और उनकी सोच भी ऐसी है. वो भी दाल चावल पे ही जी रहे हैं, वो भी ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो किडनी खराब. आई एम टॉकिंग अबाउट द यंगस्टर्स आल्सो,
5: या
4: ओके,
5: मिस इन्फॉर्मेशन. नो,
4: क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमें वहां से मिली है. ठीक है, हम लोग थोड़े से अवेयर क्यों हैं, माइट भी हम उस फील्ड में आ गए हैं, राइट, एंड माइट भी अपने आप को थोड़ा सा ओपन भी है अपने आप को चेंज करने के लिए. सो इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ ओनली ओल्डर जनरेशन, इवन जो यंगर जनरेशन है उनमें भी यही प्रॉब्लम है. और वो सेम चीजें आप अपने बच्चों को दे रहे हो. आप बच्चों की कभी बर्थडे पार्टीज पे गए हो?
5: ओह गॉड,
4: यंग पेरेंट्स ही होते हैं ना, उनके पेरेंट्स को 60-70 साल के तो है नहीं, एक्सेप्शंस आर देयर, ओके ओके, राइट, सबके यंग पेरेंट्स होंगे, राइट, क्या होता है? क्यों? और रिटर्न गिफ्ट्स में भी क्या होता है? चॉकलेट्स स्कूल में क्या होता है? चॉकलेट्स, राइट. तो मुझे लगता है वो पैटर्न ब्रेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ ओनली आवर पेरेंट्स, इवन हमारी जनरेशन भी सेम चीज सफर कर रही है, बिकॉज एज आई सेड इट्स हर्ड मेंटालिटी. सो डोंट थिंक दैट वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट पेरेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटायर नेशन. और जो हम बात कर रहे हैं ना कि आजकल के लोग अवेयर हैं प्रोटीन खाने के लिए, 1-2% आज भी यंग जनरेशन भी सोचते हैं कि प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो गर्मी हो जाएगी, किडनी में प्रॉब्लम होगी. एक्सेप्ट आई सेड पीपल हु आर एजुकेटेड,
5: या
4: एंड ओनली अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन.
5: तो कुछ बेसिक्स हैं जो कोई भी फॉलो कर सकता है इफ दे वांट टू ऑल्टर. से हमारी, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर टी जी, बाय द वे हमारे हेल्थ वेल्थ को जितने लोग फॉलो करते हैं, अ लॉट ऑफ देम आर अबव 45.
4: ओके,
5: सो आई एम सीइंग अ ड्रामेटिक शिफ्ट बिटवीन 45-55 ईयर ओल्ड्स हु वांट टू मेक बेटर चॉइसेस, पर उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ऑल्सो हो क्या रहा है घरों में, अब हर जनरेशन के लिए अलग खाना बन रहा है. ठीक है, क्योंकि घर में आपका जो बेटा बहू है वो कुछ या तो वीगन हो गए हैं या वो कीटो डाइट पर है, तो उनके लिए अलग खाना बनता है, माँ बाप के लिए अलग खाना बनता है. सो एवरीबडी इज सेइंग that basically I have to bring in some sanctity. तो अगर हम सिर्फ वो 45-60 की बात करें, क्या कोई basics हैं और thumb rules हैं जो वो nutrition और food wise apply कर सकते हैं?
4: Yes. So मैं आपको बताती हूँ, हम जब भी lifestyle change करते हैं, जब अपने clients को भी समझाती हूँ, we do step by step. Okay. Don't try to change them overnight.
5: Yes.
4: अगर आज तुम्हारे parents दाल चावल खा रहे हैं, तुम कल से उनको किनवा करी और साथ में टोफू, भैया तूफान आ जाएगा. ठीक है, एंड नॉट ओनली अबाउट पेरेंट्स, इवन फॉर पीपल लाइक अस इट्स डिफिकल्ट, राइट,
5: यू हैव टू टेपर इट इन.
4: या ओके, सो अगर जैसे सिंपल दाल चावल खा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा पनीर ऐड कर दो, चावल कम कर दो, राइट. अगर सैलड्स बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, जस्ट ऐड लिटिल बिट ऑफ क्यूकम्बर, स्टार्ट स्लोली. ओके, फर्स्टली स्टार्ट वन मील अ डे, दैट्स इट. आपको पूरी लाइफ उनकी चेंज करने की जरूरत नहीं है ओवरनाइट. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप चेंज हो जाएंगे. जैसे मैं अपने पेरेंट्स का करती हूँ, मेरे पापा की प्लेट में वही होता है, दाल चावल भर के, ठीक है, प्लेट दो, चावल निकालती हूँ, एक कटोरी दही और रख देती हूँ, थोड़ा सा सैलेड रख देती हूँ, सेम वही प्लेट, पेट भी भर गया उनका, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, बट इट बिकम मोर बैलेंस्ड. ये सिंपल सिंपल है. सो मेक श्योर कि प्लेट में प्रोटीन के सोर्सेस अच्छे से दिखने चाहिए. और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को समझाओ ये प्लेट में होना चाहिए. Right? Start with one meal. It's fine.
5: Yeah. That's a good idea. So, you spoke about your father's plate. Let me tell you my father's plate. ठीक है, एक सुबह उठ के बोलते हैं तुम्हारा IF क्या है? मेरा भी तो IF ही होता है. मैं तो अपनी पहली चाय बस पीता हूँ सुबह. दो बिस्किट के साथ या एक टोस्ट के साथ. उसके बाद तो मैं खाना सीधे लेट ही खाता हूँ. उसमें मम्मी तुम्हारी स्प्राउट्स देती है, मैं वो खाता हूँ.
4: ठीक है.
5: चाय में तो अब मैंने फीकी पीना शुरू कर दिया है, हो जाता है. ठीक है. और उसके बाद मैं सीधे लंच खाता हूँ. लंच देखो थोड़ा लेट हो जाता है, कभी कभी कोई आ गया यू नो शॉप पर या कुछ हो रहा है तो फिर ये हो जाता है कि कभी कभी समोसा वगैरह हो जाता है, वरना चाय मेरी 2-3 हो जाती है. पर फीकी पीता हूँ मैं, बिना चीनी की लेता हूँ. और फिर रात को मैं बस घर पे जो मम्मी दे देती है वही खाना खाता हूँ.
4: सिंपल
5: बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है.
4: और हल्का
5: बहुत हल्का होता है जी, ये तो घर का है. एंड माय डैड विल टेल मी, मैं तो बस क्या 2 रोटी चावल खाता हूँ, दाल लेता हूँ और जो सब्जी बनती है हमारे यहाँ जैसे प्रॉपर नॉर्थ इंडियन यूपी का खाना बनता है, तो एक गीली सब्जी बनेगी, एक सूखी सब्जी बनेगी, उसके साथ दाल होगी, उसके साथ अचार होगा, उसके साथ पापड़ होगा, उसके साथ आपको 2 रोटी और चावल. एंड कभी कभी मैं वो खाना देखती हूँ, मुझे लगता है मैं पूरे दिन में इतना नहीं खाती हूँ जो वो एक मील में खा लेते हैं.
4: कैलोरीज कितनी हाई चले जाती हैं एंड जस्ट कार्बोहाइड्रेट. अच्छा, अब आपकी मैं दाल वाली बात पे थोड़ा सा बात करती हूँ. लोग समझते हैं दाल इज अ प्रोटीन. यस, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ प्रोटीन. इट इज प्रोटीन प्लस कार्ब्स.
5: यस,
4: प्लस कार्ब्स. ठीक है. सो हमारी एक आंटी थी तो मोहल्ले में, वही तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना खाना छोड़ दिया कि मैं वो नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ दाल पीऊंगी. और वो दाल का वो जो बड़ा वाला पतीला सा होता है ना, वो पीते थे. And I was like, इससे कुछ नहीं होगा था ना,
5: explain the serving bowl.
4: Yeah, big one.
5: हाँ.
4: Because her appetite is huge, right?
5: हाँ.
4: So she thought कि दाल पीने से और सब्जी खाने से, इतनी बड़ी दाल पी रहे थे और साथ में सब्जी अच्छी खासी खा रहे थे, ठीक है, और सब्जी में भी ऑयल.
5: तो टेक्निकली वो देखिए सही काम कर रही है, उन्होंने कार्ब्स कम कर दिए हैं, पर वो किस तरह से कर रही है इज द प्रॉब्लम.
4: As I said, अवेयरनेस. ठीक है. और फिर देन मैंने बात की, उन्होंने मेरे को बताई पूरी की पूरी चीज़ कि ये है. मैंने कहा उसमें ना तेल बहुत ज्यादा है आंटी. बच्चा मैं ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ. उस टाइम पे तो मेरा दिल बैठ गया. मैंने कहा अब मैं समझ गई कि मैं किन लोगों से बात कर रही हूँ. सो मुझे लगता है एज आई सेड यू नो लोग समझते हैं ऑलिव ऑयल हेल्दी है, बट व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी? कितना खाना है? ठीक है, हेल्दी तो केले भी होते हैं. बनाना सर हेल्दी, इसका मतलब दिन में तुम 20 केले खाओगे? नो. एनीथिंग अगर आप एक्सेस में खाते हो, इट्स नॉट फॉर योर बॉडी. आपकी बॉडी उसको बाय बाय बोलना शुरू कर देती है. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी ऑल्सो.
5: तेल मैं यही बोलती हूँ हमेशा घर पर भी, वही अच्छा है जो आप कम मात्रा में यूज करें.
4: कुछ भी यूज,
5: कोई भी यूज कर लीजिए,
4: कुछ भी यूज करो,
5: कम मात्रा में यूज करो,
4: कम मात्रा में यूज करो. पीपल आर फाइटिंग ओवर इंटरनेट, यू नो, या इस ब्रांड मत यूज करो, ये मत यूज करो,
5: सीड ऑयल यूज करो. बहुत बड़ा डिबेट है.
4: अगर तुम एक चम्मच यूज कर रहे हो इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 or 5 पीपल, राइट. अब हमारे यहाँ पे तेल यूज होते हैं कड़छी. मतलब मेरी मॉम, मतलब वो जो बड़े वाले वो जो कड़छी होती है, वो वाली यूज करती है ऑयल के लिए, राइट. अब तो चलो मैंने थोड़ा सा कम करवाया, बट दैट्स अ नॉर्मल, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. और लोगों
5: तो इसका मेरे पास एक हैक है, एंड आई डोंट नो इफ यू अप्रूव ऑफ इट. मैंने अपनी मॉम को बोल दिया है कि आपके घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं आप कितना तेल डाल रही हैं, क्योंकि अंदाजे से डाला जाता है.
4: अंदाजे से,
5: ठीक है. आप अगर देखेंगी संजीव कपूर के वीडियोस जो हमारे घर में देखे जाते हैं और रेसिपीज रिक्रिएट करी जाती हैं, वो बोलते हैं 1 टेबलस्पून. नोबडी इज टेकिंग आउट 1 टेबलस्पून टू मेजर. ओके, वो टी स्पून भी बोलेंगे तो कोई मेजर नहीं कर रहा है, वो अंदाजे से ही डाला जाता है. सो आई टोल्ड हर आप बस एक स्प्रे बॉटल ले आइए, आपको कभी भी यूज करना है बस आप एक स्प्रे करिए, ठीक है, उसमें आपका काम चल जाएगा. तो उन्होंने पहले 2-3 दिन ट्राई करा, शी वाज लाइक यार राइट. बट उनके पास एक प्रॉब्लम आई, वो कहती तुम मुझे तो ट्रेन कर दोगी, लेकिन जो अब खाना बनाने वाली आएगी उसको कैसे ट्रेन करें? आई वॉज लाइक दैट्स अनदर हैक, कि आपको सिर्फ अपना कंटेनर नहीं चेंज करना है, आपको घर में जो खाना बना रहा है उसका माइंडसेट क्लीन करना है. सिर्फ अपनी माता जी का ठीक करने से काम नहीं चलेगा.
4: एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बोला. दिस इज अ वेरी गुड हैक.
5: या
4: एक तो ऑयल स्प्रे और एक टीस्पून. एक और चीज जो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ जिनके घर में कुक्स बनाते हैं खाना, क्योंकि आप उन पे कंट्रोल ही नहीं कर सकते. नहीं कर सकते आप, ठीक है. सो व्हाट आई टेल देम, यू जस्ट कीप 250 ml बॉटल आउटसाइड, बाकी तेल लॉक कर दो. एक्सेस मत दो, अगर होगा तो वो यूज करेंगे. एंड देख लो कि कितनी देर में खत्म हो रहा है. आपको तो आइडिया मिल ही जाएगा ना, अगर आप 500 ml की बॉटल ले रही हो, 250 ml की बॉटल ले रही हो, और आपकी हेल्पर अगर अगले दिन बोल रही है खत्म दीदी, तो समझ जाओ कि वो कहाँ गया है,
5: कहाँ गया है, राइट
4: राइट हाँ, वो घूम रहा है तुम्हारे हार्ट के अंदर, आएगा भी तुम्हारे पास बहुत जल्दी,
5: वो भी 10 घरों में जाके खाना बनाती है, उनको चाहिए जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी बन जाए, हाई फ्लेम में खाना बन जाए, तो वो भी तेल डाल के फटाफट कर रही है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि क्या जा रहा है।
4: मुझे लगता है सुनील, जो कुक्स है ना वो ऑयल ज्यादा यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल खाना जल्दी बनता है, दूसरा टेस्ट ज्यादा बनता है।

0: और हम जैसे लोग एक ने अनेकों बार कह चुके हैं कि ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए और SIT जांच से पहले इसको भंग करना चाहिए था और जो भी ट्रस्ट में लोग हैं उनको मंदिर से बाहर रख करके तब कोई जांच शुरू होती। ये तो हमारे नेता लगातार बोल रहे हैं, हम वहाँ सांसद के नाते चौकीदार के नाते हम बोल रहे हैं।
1: इससे ये बात साफ है कि विश्व हिंदू परिषद को बहुत परेशानी है कि चंदा चोरी की बात आज पूरे देश में की जा रही है, और अगर उनकी नीयत साफ होती तो वो कहते कि विश्व हिंदू परिषद के अंदर इतने सारे लोग हैं जो इसके बारे में बताना चाहते हैं, एक भी गवाह उन्होंने RSS से पेश नहीं किया, एक भी गवाह उन्होंने
2: राम के नाम पर तो वोट लिया पर राम का नाम बदनाम हो रहा है। अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी खुलासे हुए हैं कि वहां भी चंदा चोरी हुआ है। ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और RSS के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में। और चंदा चोरी तो बिल्कुल साफ हुआ है, हजारों करोड़ का चंदा चोरी हुआ है उत्तर प्रदेश में, और अंदर से ही ये सब जानकारी आ रही है।

0: With each passing day, the probe teams are unearthing new clues in the Ram Mandir Chanda Chori case. All accused have been grilled by the police again inside Ayodhya jail. Each accused questioned separately after court nod. Investigators have recovered key evidence and the accused are being confronted with the same. India Today Inside Scoop reveals that in a major breakthrough, Ayodhya police, with the help of the cyber cell, has successfully recovered deleted data from the phones of the accused. This data is said to be more than 1 year old. Chats recovered from this data reveal the theft of over 2 crore rupees from the donations. Adding to the drama, Anukalp in the chat had accused Lovekush of stealing his share of the loot. Now, the bank transactions of all the accused are under scanner.
1: After 13 hours of police custody remand of main accused Avinash Shukla, today is the turn of 5 other accused in donation theft to be grilled. Today, Ayodhya police is questioning 5 other accused, including Ramashankar Yadav alias chat data backup revealed a main thing that during 1 year, more than 2 crores of rupees was stolen.
0: Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust is holding a crucial meeting on Monday with the agenda to decide on the resignation submitted by General Secretary Champath Roy and Trustee Anil Mishra. Opposition tirade continues to intensify with the claims that crores have been stolen from the donation money. Opposition has held the BJP, VHP and the RSS responsible for shattering the belief of Ram Bhakts. On the other hand, the VHP sought proof from opposition for its claim that hundreds of crores were looted. The Saffron body urged police to question Congress and SP leaders over their sensational claims.
2: कह चुके हैं कि ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए और एसआईटी जांच से पहले इसको भंग करना चाहिए था और जो भी ट्रस्ट में लोग हैं उनको मंदिर से बाहर रख करके तब कोई जांच शुरू होती।
3: प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है, हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहां आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है।
0: As the political mudslinging continues, investigators are inching closer to the truth. The big fish be in the net next. With Santosh Sharma, Bureau Report, India Today. And we are continuing to keep a track of all the updates into this very case. In the latest, what we are learning is that the Congress has now launched a blistering attack on the BJP RSS over the alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya, saying it is a scam perpetrated by their ecosystem on which Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah are totally silent. Congress General Secretary Jairam Ramesh, leading this very tirade, says and alleges that the BJP has a three-pronged strategy: vote chori, seat chori and now chanda chori. He's also lashed out at the RSS, saying its statement on the issue was disgraceful and shameful. The Chanda Chori has taken place, which is absolutely beyond any doubt. The RSS statement is disgraceful and shameful. These are the people who try to give certificates to others for integrity, honesty and nationalism. And now they have been caught in a most disgraceful and shameful manner. Those are his words that I just quoted from what has been said by Jairam Ramesh. Remember, we are consistently bringing to you how politics on one end is also snowballing at this point into this very matter. Champath Roy's resignation, while submitted to the trust, has still not been accepted. And that's one of the biggest flashpoints of this entire case, politically speaking, in terms of war of words. And investigation and parallelly also continues by the SIT, which is only unraveling more and more skeletons out of the closet at this point of time. So yes, this is where it all stands as we speak. On that note, we have more news coming. Let's quickly take a look. Now, there is news that's now going around with regards to whether gold-plated Ramcharitmanas is missing. Well, who has raised this question? Samajwadi Party. They say the scripture gifted by ex-Home Secretary is missing. Samajwadi Party's Chori from Hisab to Kitab attack on the BJP. Samajwadi Party says BJP should have spared the gifted scripture at least. Now, this is a new angle that we bring to you with regards to what Akhilesh Yadav and that is the Samajwadi Party members are also asking at this point of time. They flag that it is a copy of the Ramcharitmanas and a gold-plated copy of the Ramcharitmanas that is missing. These are allegations that are coming in so far from the Samajwadi Party. Of course, attacks around that also mounting and amping up, slamming the BJP over the same. As we just heard, the Congress also did the same a little while back. Ashish Srivastav joining me on the broadcast with more details on the same. Ashish, a very good evening to you. Sabse pehle, ye jo ab nayi ek allegation aa rahi hai, Ramcharitmanas, a gold-plated Ramcharitmanas bhi kaha ja raha hai ki missing hai. Ye Samajwadi Party ne claim kiya hai. Iske piche koi evidence di gayi hai ya koi aise kuch bhi aise particular proof diya gaya hai ki ye cheez missing hai?
4: चीफ अखिलेश यादव ने इसको पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और दावा किया है, चूंकि इनका दावा है कि जो पूर्व गृह सचिव है लक्ष्मी नारायण, उनके द्वारा जो एक रामचरितमानस भेंट की गई थी 2022 और 2024 के समय में, वो पूरी तरीके से गायब है, ऐसा दावा किया गया और उस गायब है और उसी को लेकर ये कहा गया कम से कम रामचरितमानस को तो छोड़ देते या बख्श देते, 147 ग्राम की थी और जिसका दावा किया गया वो गायब है। साफ तौर से कई ऐसे लोग थे जहां जिन्होंने रामचरितमानस ही नहीं अलग अलग चीजों को दावा किया है कि राम मंदिर से वो गायब हुई है और उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने चंपत राय जो वहां के महासचिव थे उनसे लेटर जारी करने की बात कही थी, उनसे बिल लेने की बात कही थी, स्लिप लेने की बात कही थी। और इस मामले में भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने फिर राजनीति गरमा दी है और अखिलेश यादव साफ कह रहे हैं कि कम से कम चंदा चोरी करने वाले इस बुक यानी कि जो रामचरितमानस है उसको तो छोड़ देते। तो उनका दावा उनके जो पूर्व गृह सचिव है केंद्रीय उनके जरिए जो बात कही गई है उसी को दावे को दोहराया गया है और कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया गया है कि जो चंदा चोरी वाली बात है वो अब रामचरितमानस तक चोरी हो जा चुकी है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं। तो एक तरफ तो SIT की जाँच चल रही है, दूसरी तरफ पूरी जो SIT है वो आभूषण से जो गायब हुए हैं, जो ईंटें गायब हुई उन सबकी जाँच कर रही है। कई बार दावा किया गया कुछ चीजें वापस मिल भी गई है जिसमें काक घुसंडी जैसी चीजें थी जो कि वापस मिली है और अब ये नई चीज जो रामचरितमानस के बारे में समाजवादी पार्टी जिक्र कर रही है वो कह रही है कि रामचरितमानस जैसी चीज को भी कहीं ना कहीं गायब कर दिया है। एक तरफ सवाल उठ रहा है चूंकि विश्वंदी परिषद कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज गायब होने की बात कह रही है, एलिगेशन लगा रही है, उसको लेकर वो सबूत SIT को पेश करें और कहीं ना कहीं ऐसी आगे बातें रखें। दूसरी तरफ विपक्ष जो है अपोजिशन है समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो लगातार इस तरीके की बात कह रहे हैं, उन्होंने शुरुआत से ही चंदा चोरी की बात कही है और अब भी वो इस जो रामचरितमानस है जो गोल्ड बताया जाता है कि चढ़ी हुई है पानी उसको लेकर कहा है कि वो गायब हुई है और उसको चंदा चोर नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर चीज करेंगे। तो बड़ा सवाल खड़ा कर दिया फिर से SIT की जांच और एक तरफ ट्रस्ट की बैठक से पहले और इस पूरे फाइनल सिनेरियो
0: जी। जी आशीष, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, ईच पासिंग डे वी आर लुकिंग एट मोर एंड मोर allegations coming in from different parties with regards to missing items at this point that have been donated by their parties, by their party members, which are now missing. So yes, now the BJP has also said that you need to come up with evidence so that the SIT can investigate that very matter. How things unfold, of course, we're keeping a very close track on that. But on that note, we're shifting our focus to a different story. Amid raging controversy over the ethanol blended fuel, which has in fact been underway in the country for some time, since in fact the month of April, what we're looking at is top auto voices from the auto industry defending the government in asserting that extensive testing has found no evidence that fuel poses concerns for vehicles. The remarks were made amid an ongoing debate over the government's E20 petrol mandate. They highlighted that ethanol is used in Formula One racing cars and argued that the transition to E20 followed years of scientific evaluation and regulatory approvals. Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri himself has also pushed back against the social media claims surrounding ethanol blended fuel, saying that the government welcomes constructive criticism but not misinformation about the biofuel program. According to the Government of India, more usage of ethanol fuel will also cut dependence on the crude imports and will shield the economy from oil shocks, such as the one we just witnessed in the last few months due to the war in West Asia. It will also boost domestically produced fuel, support the sugarcane farmers, and promotes cleaner transportation at this point. So these are some of the reasons and factors that were cited by him to push forward and boost the particular usage of ethanol blended fuel in the country at this point.
5: Ethanol ka kaam na humne invent kiya, 100 saal se is pe kaam ho raha hai. Jo ek Henry Ford tha, jo Ford Motor Company ka malik tha, usne us samay gaadi chalai hai biofuel se, kerosene se, fossil fuel se. भारत में अगर आ जाएं तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने. मुझे याद था जब मैं ब्राजील में राजदूत था, मैं बात कर रहा हूं 2006 से लेकर 2008, उस समय शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, शायद उससे पहले या बाद में, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए. वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई.
6: जो E20 का माइग्रेशन हुआ है वो काफी कैलिब्रेटेड रहा है और काफी टेस्टिंग और सब कुछ देख के किया गया है, और उसमें काफी मतलब कि सोच समझ के सब फैक्टर्स को देख के गवर्नमेंट ने, टेस्टिंग एजेंसीज ने टेस्टिंग करने के बाद इसको लागू किया है. 2023 के बाद में जितनी भी गाड़ियां बिक रही हैं वो E23 मटेरियल कंप्लायंट है, E20 मटेरियल कंप्लायंट है, और उससे पहले भी जो गाड़ी थी उनके टेस्टिंग से ये दिखा कि गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप E20 डालते हैं.
7: हमने पिछले साल में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में करीब 1.5 करोड़ ऐसी गाड़ियां सर्विस की होंगी अपने हमारे मारुति नेटवर्क में, कस्टमर्स की गाड़ियां जो 2023 से पहले की थी, जो E10 कंप्लायंट थी, E20 नहीं थी
0: जी.
7: लेकिन उनमें हमने ऐसा कोई इश्यू नहीं ऑब्जर्व किया, ऐसा कोई मीनिंगफुल कंसर्न नहीं आया जो E20 से रिलेटेड हो. ये हो सकता है कि फ्यूल एडल्ट्रेशन की वजह से कोई बहुत ही लिमिटेड पंप्स, लिमिटेड सिटीज में केसेस हों, लेकिन फ्यूल एडल्ट्रेशन का कोई बिल्कुल अलग फिनोमेना है. वो इंडिया में काफी टाइम से था, अभी भी है और रेगुलरली सॉल्व होता रहता है, उसका E20 से कोई लिंकेज नहीं है.
8: देखिए, जो भी E20 लॉन्च हुआ है दिसंबर 25 में, वन नेशन वन गैसोलीन फ्यूल है ना, इसमें अलग अलग पहले कुछ रीजन्स में आया, फिर इट हैज कम टू एवरी रिटेल आउटलेट. इसकी बुनियाद जो है वो एक्सटेंसिव टेस्टिंग पे हुई है, रिगरस टेस्टिंग जो कि बोथ फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर इंजन्स पे हुई है, उसकी बेस आउटकम पे E20 हैज बीन लॉन्च्ड ऑन पैन इंडिया बेसिस.
0: So let us take you through how the government has come out to fact check the ethanol claims. What all were the claims being made on social media so far?

हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का घपला है, हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहाँ आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो ये जिम्मेवारी से बोलते होंगे, किसी आधार पर बोलते होंगे। इनके पास में कुछ लोगों ने बताया होगा, कुछ कागज़ दिए होंगे, कुछ तो भी सामग्री होगी। तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज़ है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जाँच पूरी करेंगे।

0: जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: You are watching India Today.
2: ने साल भर आपसे बहुत क्रिटिकल सवाल पूछे.
3: कैन वी ट्रस्ट द पोल्यूशन नंबर्स इन दिल्ली?
4: एक्यूआई इन द नेशनल कैपिटल रीजन हैज गॉन अप टू 900 to 1,000. मैं तो सुन ही रही हूँ तब से आपकी बात. मैं बस कहना चाह रही हूँ, हु डू इंडियंस ब्लेम फॉर दिल्लीज टॉक्सिक एयर? कोई और होता तो शायद इस इंटरव्यू के लिए आज अग्री नहीं करता, लेकिन आप यहाँ बैठी हैं, हमारे सवालों का जवाब देना चाहती हैं, सो कूडोस टू यू. ईवी पॉलिसी क्वेश्चन मार्क अब इम्प्लीमेंटेशन पर है.
5: वी आर रेडी फॉर दैट. आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है.
4: 33% अभी भी जो पोल्यूशन आता है वो कमर्शियल ट्रक्स का है. उस पर आपकी ये पॉलिसी इतनी अग्रेसिव क्यों नहीं हो पाई?
5: आज जितना हम कर रहे हैं, क्या पिछली किसी सरकार ने इतना किया? ऑड इवन, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, इंजन ऑफ, इसके अलावा क्या किया पिछली सरकारों ने?
4: समर टाइम पर गैप लग रहा था. अगर आप रोड पर जाएं तो आपको दिखता है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है. दिल्ली पुलिस आपके पास है नहीं, कैसे करेंगे आप?
5: पॉल्यूशन 2 महीने करने का काम नहीं है, ये साल भर करने का काम है. बहुत ही सख्ती से इनको लागू किया जाएगा.
4: यू हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रियली चेंज द फेस ऑफ दिल्ली.
5: हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीतियां भी स्पष्ट है.
4: रेखा गुप्ता का फर्स्ट टर्म एज चीफ मिनिस्टर एंड होते होते
5: ये सवाल आपने मुझसे पहले भी पूछा था, तो आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, हम लोग देखते हैं.
4: हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल ब्रॉडकास्ट. पिछले कई महीनों और सालों में हम लगातार आपके पास खबर लेकर आ रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण कितना बढ़ गया है. हमने सक्सेसिव सरकारों में, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, लगातार सवाल उठाए. ऑड इवन चलता है कि नहीं चलता है, स्मॉग टावर काम करता है कि नहीं, आर्टिफिशियल रेन से कितना फर्क पड़ेगा, सब पर हमने काफी क्रिटिकल क्वेश्चंस उठाए सरकार को. बट टुडे, टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, वी हैव अमंग्स अस एक ऐसी पॉलिसी जो एक बहुत पिविटल रोल प्ले करने वाली है फॉर दिल्ली फ्यूचर. दिल्ली के पास एक नई अब ईवी पॉलिसी है. ये पॉलिसी पहले भी थी, लेकिन इस बार जो उसके चेंजेस आए हैं वो अलग क्यों हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये सिर्फ इंसेंटिव्स नहीं देती, ये एक हार्ड डेडलाइन लगाती है कि कब आईस व्हीकल्स जो है, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स हैं, फेज आउट हो जाएंगे दिल्ली से. ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि अगर एक बड़ा चेंज दिल्ली में आया था सीएनजी पॉलिसी के चक्कर में, सीएनजी पॉलिसी के थ्रू जो शीला दीक्षित लेकर आई थी, तो ईवी पॉलिसी उससे ज्यादा या डेफिनेटली उससे कम इम्पैक्ट नहीं लाने वाली है. और वो लेकर आई हैं रेखा गुप्ता, जो हमारे साथ आज बैठी हुई हैं. वेलकम टू द प्रोग्राम मैम.
5: थैंक यू सो मच.
4: आई हैव टू से दिस आउट राइट इन द बिगनिंग कि हमने साल भर आपसे बहुत क्रिटिकल सवाल पूछे. कोई और होता तो शायद इस इंटरव्यू के लिए आज अग्री नहीं करता, लेकिन आप यहां बैठी हैं, हमारे सवालों का जवाब देना चाहती हैं, सो कूडोस टू यू.
5: थैंक यू.
4: मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ईवी पॉलिसी के जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, पॉलिसी का जो है इसके बारे में, इवन जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने काफी प्रेस करा है, काफी आपको लोगों ने बताया होगा, फीडबैक जो हमें भी मिल रहा है, हम जितने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं सबने काफी अच्छे से रिसीव करी है ये पॉलिसी. क्वेश्चन मार्क अब इम्प्लीमेंटेशन पर है. और मेरे रिसर्च के हिसाब से तीन चीजें हैं जिस पर ये इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है. नंबर एक, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसे बढ़ाकर लाएंगी? नंबर दो, क्या आप ईवी जो व्हीकल्स हैं वो प्रोवाइड कर पाएंगी? और नंबर तीन, क्या आप ईवी व्हीकल्स वो जो हैं सही दाम पर, एक कंपेटिटिव प्राइस पर लोगों को दे पाएंगी? पहले वाले से शुरू करते हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या आपके एग्जीक्यूशन प्लान्स हैं?
5: ये बात बहुत सही है सोनल कि इस ईवी पॉलिसी की सक्सेस बहुत बड़ी मात्रा में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है और वी आर रेडी फॉर दैट। हमने पूरी तरीके से उसको प्लान किया, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर है उसको पार्टी बनाया। वैसे तो जनरली लोग अपने प्राइवेट व्हीकल के लिए घरों से ही चार्जिंग करता है मैक्सिमम, पर फिर भी पब्लिक प्लेसेस पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसमें हमने ओईएम्स को इन्वॉल्व किया है, उसमें हमने सोसाइटीज के लिए, उसमें सरकार के द्वारा डीटीएल, हर एक एजेंसी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में मदद करे। और उसके लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंटली हमने सिंगल विंडो सिस्टम, ताकि लोग इसमें जो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें ईवी के लिए, उसमें उनको कहीं पे भी हर्डल फेस ना करनी पड़े। सरकार उनको पूरी तरीके से फैसिलिटी देगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस देगी, मोटिवेट करेगी, सपोर्ट देगी। और अभी वर्तमान में 9000 चार्जिंग पॉइंट हमारे पास हैं। हमारा टारगेट 32,000 तक जाने का है और उसके लिए लगातार हमने उसको नोडल एजेंसी डीटीएल को बनाया है, हम काम कर रहे हैं। ओईएम्स को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर किया है कि उनको भी अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, इवन सोसाइटीज को, और कॉमन प्लेसेस पे भी हम इसको लगाने वाले हैं। तो मैं श्योर करती हूं दिल्ली की जनता को कि आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है।
4: जी, पॉलिसी में लिखा है कि 32,000 चार्जिंग पॉइंट्स बनेंगे मार्च 2030 तक। अब चार्जिंग पॉइंट्स के लिए आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देना नहीं होता है, आपको लैंड भी प्रोक्योर करनी होती है। और दिल्ली बहुत ही पिक्यूलियर स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, लैंड कई बार आपकी नहीं है, कभी एमसीडी की है, कभी किसी और अथॉरिटी की भी है, कभी एनडीएमसी की है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, आप कॉन्फिडेंट है कि ये नंबर रीच हो पाएगा?
5: मैं आपको इस बात को जरूर ध्यान दिलाऊंगी कि जब बात होती है कि डबल इंजन सरकार की, आज दिल्ली स्टेट में जो गवर्नमेंट है, सेंटर में, स्टेट में, एमसीडी में, सभी एजेंसीज एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं। और जब हमने आरोग्य मंदिर खोले तो हमने बाकी एजेंसीज की लैंड को भी यूटिलाइज किया, इवन डीडीए, एनडीएमसी, ड्यूसिप, सबने अपनी लैंड दी। और इसी तरीके से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हमने लैंड ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। एजेंसी से वो जमीन लेना, किसके जिम्मे क्या काम होगा, एवरीथिंग इज प्लान्ड। और कहीं पे भी एटलीस्ट लैंड की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और ये सारा काम कोई एक दिन में नहीं हुआ है, एक साल से इस पॉलिसी पे काम किया जा रहा है, डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यहां तक कि जीरो से लेकर के एंड पॉइंट तक, ए टू लेकर जेड तक, सारे के सारे कामों को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। जहां हमने अपनी पॉलिसी में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा तो वहां हम उस बैटरी के डिस्पोजल की भी बात कर रहे हैं, ई वेस्ट की भी बात कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर हमको ई वेस्ट डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, उसके लिए भी आज से काम हो चुका है।
4: जी जी, पूरी पॉलिसी में करीब 7,000 करोड़ की बात हुई है, जो आप एक तरह से वेवर दे रही हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो उसमें 8,000 करोड़ और हैं। टोटल 15,000 करोड़ की ये स्कीम है। इसमें से आप क्या करेंगी कि ये टू वी व्हीकल्स जो हैं, टू व्हीलर्स हैं बेसिकली, ईवी व्हीकल्स, वो अफोर्डेबल हो जाएं? क्योंकि अभी देखिए क्या हो रहा है, अडॉप्शन में आपको कहां दिक्कत आएगी कि जो टू व्हीलर चलाने वाले लोग हैं, वो जो एक आइस व्हीकल खरीदते हैं या वो पेट्रोल या डीजल लेते हैं, वो कम दाम पर आती है, आपकी ईवी जो है वो महंगी है। इसमें से क्या वो मैच कर पाएंगी? क्योंकि अडॉप्शन तो तभी होगा, आदमी खरीदेगा तभी जब उसे लगेगा कॉस्ट बेनिफिट मिल रहा है।
5: देखिए, एडॉप्शन जो है बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एडॉप्शन इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी आसानी से वो सब्सिडी का जो कैश बेनिफिट है वो कस्टमर तक पहुंच पाता है। और हमने अपनी इस पॉलिसी में खाली सब्सिडी नहीं दी, स्क्रैपिंग का भी इंसेंटिव दिया है। तो ये टू वे चीज है। और फिर जो इंसेंटिव है वो डीबीटी के माध्यम से कस्टमर को मिलने वाला है, वो भी टाइम बाउंड मैनर में। आपको अपनी आरसी लेने के 30 दिन के अंदर अप्लाई करना है और 60 दिन के अंदर आपको वो कैश जो डीबीटी पहुंच जाए, ये हम एंश्योर करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो इस ईवी पॉलिसी में लाई गई है वो एडॉप्शन के लिए बहुत ही परफेक्ट है, लोगों के लिए मोटिवेटिंग है कि आपको सब्सिडी भी मिल रही है, आपको स्क्रैपिंग वैल्यू भी मिल रही है। और जब एक एक व्हीकल पे, यानी टू व्हीलर का अगर मैं एग्जाम्पल लूं, तो 30,000 रुपए आपको सब्सिडी दे रहे हैं, जो कि पूरे देश में कहीं नहीं है इतना बड़ा अमाउंट सब्सिडी का। फिर स्क्रैपिंग पे हम 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि जब रोड टैक्स माफ है, रजिस्ट्रेशन फी माफ है, आपको स्क्रैपिंग मिल रहा है, आपको सब्सिडी मिल रही है, तो हर कोई लेना चाहेगा। इस दिल्ली शहर के लिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है उतनी यहाँ की जनता की भी है, तो हम मैंडेट भी कर रहे हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं।
2: अगर हम लास्ट पोल्यूशन रिपोर्ट उठाएं, टेरी की रिपोर्ट ही ले लेते हैं, सरकार भी उसी को देखती है, उसके बाद से कोई कॉम्प्रिहेंसिव पोल्यूशन रिपोर्ट बनी भी नहीं है मेरे ख्याल से, उसमें अगर आप उस रिपोर्ट को देखें तो करीब 46% दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स से आता है, जिसको आपने इस पॉलिसी में काफी अच्छे तरीके से टैकल करा है, आपने काफी इंसेंटिव्स दिए हैं, एंड देयर इज अ डेडलाइन कि अगले साल से स्टार्टिंग जनवरी ऑफ 2027 देयर विल बी अ फेज आउट, नई थ्री व्हीलर्स नहीं रजिस्टर्ड होंगी, टू व्हीलर्स नहीं रजिस्टर्ड होंगे, वो सारे आपके आपने बताई है। लेकिन इसमें से 33% अभी भी जो पॉल्यूशन आता है वो कमर्शियल ट्रक्स का है, उस पर आपकी ये पॉलिसी इतनी अग्रेसिव क्यों नहीं हो पाई?
5: दो कारण है इसमें। एक तो हमारी ये जो पॉलिसी है वो कॉमन मैन ओरिएंटेड है, उसमें जो बड़ा सेगमेंट, जैसा आपने टैरी की स्टडी पे बताया कि जो बड़ा सेगमेंट अगर हम पॉल्यूशन को समझें कि जो एमिशन फ्री की तरफ हमें जाना है, तो उसमें बड़ा सेगमेंट है टू व्हीलर का और थ्री व्हीलर का, उसके बाद में 46% आप ही ने बताया, और उसके बाद 33% है जो N2 हमारे ट्रक्स हैं। N2 ट्रक्स का 33% इन्वॉल्वमेंट हम मानते हैं, तो हमने उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि जो 1 जुलाई से 30 सितंबर जितने भी N2 ट्रक्स अपने आप को ईवी में कन्वर्ट करेंगे, उस अर्लियर जो पहले के शुरू के 1,000 ट्रक्स को हम दिल्ली में 24 आवर्स का जो नो एंट्री जोन था उसमें अलाउ करेंगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि स्टेक होल्डर ने भी माना और वो इस बात पे राजी हुए कि हाँ ये हमारे लिए बेनिफिट है। सेकेंडली, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी इसमें बहुत सारे रिलीफ दिए जा रहे हैं, जो दिल्ली NCR के पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए है कि ये N2 व्हीकल्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से 8% OEMs के माध्यम से डिस्काउंट दिया जा रहा है, और 5% जो है उनको इंटरेस्ट में वेवर दिया जा रहा है, ताकि ये जितने लोग भी N2 ट्रक्स के मालिक हैं उनको ये बेनिफिट मिले और वो भी ईवी पे आए।
2: अब मैं N2 के लिए जस्ट क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि ऑडियंस को शायद समझ में नहीं आया, N2 आपके N1 हो गई आपके, वो छोटा हाथी जिसे बहुत बोला जाता है कॉमनली दिल्ली में, और N2 आपकी हो गई जो बड़ी कार्गो ट्रक
5: बड़ी होती है, जो 3.5 टन से 12 टन तक का वेट लेकर के चलते हैं, दैट इज N2
2: जी। बट मैम ये बात आप और हम दोनों जानते हैं कि जितनी हमारी दिल्ली में गार्बेज कलेक्शन ट्रक्स हैं, जो पुरानी ड्रग्स हैं, जो चाहे दिल्ली पुलिस यूज कर रही हो, जो पुरानी MCD की ट्रक्स हैं, जो बाकी वाटर स्प्रिंग एक्सेट्रा के लिए भी जो यूज होती है, असली पोल्यूशन तो इतनी पुरानी है वो उन्हीं से निकलता है, उस पर आपको नहीं लगता है कुछ और देना चाहिए था?
5: आपको ये जानकर के खुशी होगी और दिल्ली की जनता को भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये पॉलिसी केवल पब्लिक के लिए नहीं है, ये केवल प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए नहीं है, सरकार ने भी पूरी तरीके से इसको फॉलो करने के लिए हर चीज को अडॉप्ट किया है। हमने दिल्ली में जो मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए MRS मशीनें खरीदने के लिए जो टेंडर लगाए वो भी दैट इज ओनली फॉर ईवी व्हीकल, हम ईवी ही ले रहे हैं। हमने अपने मैंडेट में ये भी रखा है दिल्ली सरकार भी जो भी नए व्हीकल जो है परचेज करेगी या लीज करेगी वो सब ईवी होने चाहिए। आज की डेट में हमारे वाटर स्प्रिंकलर हो, हमारी MRS मशीनें हो या जो भी अदर व्हीकल्स हैं, उन सबको सरकार भी ईवी की ओर जा रही है, अपने प्राइवेट व्हीकल भी हम लोग ईवी खरीद रहे हैं, तो कहीं से कहीं तक भी 100% और हम सब मिलकर के, वो प्राइवेट स्कूल्स हो, वो हमारे ट्रक्स हो, टू व्हीलर्स हो, थ्री व्हीलर्स हो, गाड़ी हो, सब ने मिलकर के जब ये ठान लिया है कि दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करना है, तो उसमें दिल्ली सरकार भी एक बड़ी यूनिट है और हम अपने सारे व्हीकल्स को ईवी की ओर लेके जा रहे हैं।
2: ग्रिड इतना पावरफुल है कि इतना चार्जिंग प्रोवाइड कर पाएगा हमारा?
5: ये भी एक और डायमेंशन है जिसमें कि पूरी तरीके से हमारे ग्रिड्स, हमारे सब स्टेशंस को मजबूत किया जा रहा है। उसका भी लॉन्ग टर्म प्लान हमने बनाया है कि पीरियोडिकली हम उस पर कितना खर्च करने वाले हैं, अपने सब स्टेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, नो डाउट। आज यदि हम 9000 मेगावाट पे खड़े हैं तो हमें ये डिमांड लगातार बढ़ेगी, तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है उसको हम कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को कहीं पे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये सारे डिपार्टमेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं और उसको काम करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है।
2: आपने विंटर पॉलिसी की बात करी तो उस पर आ जाते हैं। आपने एक विंटर पॉलिसी निकाली है जिसमें अब मैंडेटेड रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। अभी तक ही ग्रैफ पर डिपेंड करता था, जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा जाते थे तो वो पॉलिसीज लगती थी, जब नहीं थे तो वो रिस्ट्रिक्शंस हट जाते थे। तो क्या आप ये समझना चाहिए कि ये पॉलिसीज रहेंगी फ्रॉम नवंबर 1st टू फरवरी 28th और ग्रैफ अब नहीं लगेगा?
5: देखिए, पिछले साल की वर्किंग में हम ये समझ पाए कि ये ग्रैफ जो है कभी दो दिन लग गया, एक दिन छूट गया, फिर इस तरीके से लगातार दिल्ली के लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, ना काम हो पाता है ना ही पॉल्यूशन पे कोई इफेक्टिव रिजल्ट आता है। इस बार हमने बहुत ही टाइमली, यानी कि जुलाई माह में ही विंटर एक्शन प्लान अनाउंस किया है, जिसमें कि डेट वाइज हमने ये बताया है कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दिल्ली के लिए बता दिया गया है कि आपको पीयूसी के बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा, पूरे साल नहीं मिलेगा, उस टाइम पीरियड में भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको वर्क फ्रॉम होम की बात की गई है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में आप उस समय नहीं कर सकते आउटडोर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। आप
2: 10th of December से जनवरी 20th तक कोई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट बैन है,
5: कंप्लीट बैन होगा। और इसी तरीके से ग्रैब भी समझ लीजिए कि ये नोटिफाई हो गया है, इसके बाद अलग से कोई और सूचना आपके पास नहीं आएगी। उस दौरान जो भी एक्टिविटीज बैन थी वो आप नहीं कर पाएंगे,
2: पर बाकी के साल में जो ग्रैब की एक्टिविटीज है वो चलती रहेंगी,
5: वो एज इट इज
2: चलती रहेंगी। लेकिन मैम, हम क्योंकि ग्रैब की बात कर रहे हैं, आई हैव टू आस्क यू दिस। ग्रैब में प्रॉब्लम ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, राइट? आपके पास दिल्ली पुलिस नहीं है, वो जाके सड़कें, आप सड़कों पर गाड़ियों को नहीं रोक पाती हैं, आप कंस्ट्रक्शन पे बैन्स नहीं लगा पाते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट आते हैं, कैसे प्रिवेंट करेंगी?
5: देखिए, जब इतना बड़ा प्लान हम लेकर के आए हैं और इतनी सीरियसनेस हर लेवल पर है, दिल्ली सरकार के लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, तो हमने सारी एजेंसीज को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उस तरीके से तैयारी शुरू की है। हमने अपनी एजेंसीज को स्ट्रेंथन किया है, हमने लोग रिक्रूट किए हैं, ऑफिसर्स रिक्रूट किए हैं जो कि इस पूरे के पूरे प्लान को ऑब्जर्व करेंगे, उस पर जो कार्रवाई करनी है उन सबको करेंगे। पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, हर व्यक्ति उसके ऊपर काम करेगा और पूरी सख्ती के साथ में हम जितनी भी नोटिफिकेशंस जारी हुई हैं उसको हम लागू करेंगे।
2: आप ऑप्टिमिस्टिक हो रही हैं, पर दिल्ली के लोग जुगाड़ू हैं। ऑड एंड इवन लगा था, सबने अपने घर में एक एक गाड़ियां रख ली। अब आपने ईवी करी है, सब बोलेंगे सेकंड कार ईवी कर लेते हैं, पहली कार तो अभी भी ईवी नहीं करेंगे। लोग कुछ ना कुछ तो पेज ढूंढ लेते हैं। देखिए, दिल्ली के लोग अपना दिमाग खूब लगाते हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोऑर्डिनेशन कैसे होएगा? आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम दैट यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर दिल्ली पुलिस, तो क्या बातचीत होती है बैक चैनल में? आप कैसे इंश्योर करेंगे इन्फोर्समेंट हो, क्योंकि उसके बिना ये पॉलिसी नहीं काम कर सकती।
5: हमने पीछे ही अपनी डीपीसीसी को ऐसे वॉलंटियर्स लगाए, ऐसे हमने लोग अडॉप्ट किए वहां पर, जो कि पूरी तरीके से वायुदूत का हमने उनको नाम दिया, जो इस काम को देखरेख करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया कि हमारी सारी एजेंसीज इसमें लगने वाली हैं और हर तरीके से, चाहे हमारा पीडब्ल्यूडी हो, चाहे हमारा एनवायरमेंट विभाग है, इस काम को करने वाले हैं। और पुलिस हो, ट्रैफिक हो, हर एजेंसी को हमने इस कॉमन एजेंडा पे लेके आए हैं, सबको इसे फॉलो करना होगा। और दिल्ली का पॉल्यूशन केवल सरकार की प्रॉब्लम नहीं है, जनता की भी तो प्रॉब्लम है। आपने कहा कोई व्यक्ति दो गाड़ी ले सकता है, जरूर रख सकता है, पर एट ए लार्ज हमने जो ईवी पॉलिसी दिल्ली में लॉन्च की है वो उस मध्यम वर्गीय लोगों के लिए की है जो टू व्हीलर पे चलता है, जो 30 लाख से नीचे की गाड़ी लेके, एक सिंगल गाड़ी ही उसका अपना जिंदगी भर की कमाई होती है जिसको वो लेके चलता है। हो सकता है घर में चार गाड़ी हो सकता है किसी के लिए ईवी की ऑप्शन एक सेकेंडरी ऑप्शन हो सकती है, जरूर हो सकती है, हर वर्ग का व्यक्ति यहां रहता है। परंतु एट ए लार्ज हमें लोगों को उस तरफ मोटिवेट करना है, उसी के लिए हम मैंडेट भी लाए हैं और वही हमारा प्रयास भी है। और व्यक्ति प्रयास करते हुए इसको बेहतर, खूब से बेहतर की ओर लेके जाने का हमारा निश्चय है और वो हम कर रहे हैं। हमारी नियत भी साफ है और हमारी नीतियां भी स्पष्ट है।
2: मैम, आई लव दैट यू आंसर ऑल क्वेश्चंस विद अ स्माइल ऑन योर फेस. आप ऑप्टिमिस्टिक बहुत हैं इसके बारे में. तो एक ऑप्टिमिज्म ही नंबर मुझे दे दीजिए कि लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आपके हिसाब से आफ्टर ईवी पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड, हम 27 का नंबर लेकर चलते हैं जनवरी, हाउ मच ऑफ पोल्यूशन विल कम डाउन?
5: आप ये देखिए, परसेंटेज में या टाइम में अगर हम पोल्यूशन को बांधेंगे तो मैं यही कहूंगी कि पोल्यूशन तो भाई बांधने वाली चीजों में तो नहीं है. इस ईवी पॉलिसी के साथ और ईवी पॉलिसी के अलावा भी जो मेजर्स हम लोग कर रहे हैं, हम 70 लाख पेड़ पौधे इस एक साल में लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ईवी पे लेकर के जा रहे हैं, हमने डस्ट मिटिगेशन पे बड़ा काम किया है, और इस सब चीजों को जोड़ते हुए जब सारी चीजें अलग अलग डायमेंशन में काम करते हुए भी हम जब एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी तादाद में जनता ईवी को अडॉप्ट करना शुरू करेगी, उतना ही धीरे धीरे करके बाकी सारे एफर्ट्स करते हुए हम पॉल्यूशन को कम करते हुए जाएंगे. आज पूरी तरीके से दिल्ली हर सेगमेंट पे काम कर रही है, हर सेक्टर पे काम कर रही है.
2: आपके दिमाग में कि इतना परसेंटेज होगा, कैलकुलेशन करा होगा,
5: जब पॉल्यूशन
2: आपके दिमाग में होगा कि 29 के बाद आप देखेंगे डिप होना शुरू हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा पर डिप होना शुरू हो जाएगा.
5: क्या आप किसी भी एक दिन में आप ये बता सकती हैं कि पॉल्यूशन कितनी मात्रा में आपके पास आ जाएगा, किस दिन कितना होगा? क्या इस सवाल को आप बांध सकती हैं, आप मुझे बता सकती हैं कि इतना पॉल्यूशन होगा? आप कहेंगे इतना इस दिन होगा, तो मैं कहूंगी इतना इस दिन कम हो जाएगा.
2: नहीं, पर आपके दिमाग में एक गोल होगा ना कि इस साल तक मेरे फर्स्ट टेन्योर, ये बता दीजिए, चलिए रेखा गुप्ता का फर्स्ट टर्म एज चीफ मिनिस्टर एंड होते होते
5: ये सवाल आपने मुझसे पहले भी पूछा था, जब आप मुझे समय में बांधना चाहती थी तब भी मैंने कहा था कि बोलूंगी कम और काम ज्यादा करके दिखाऊंगी. मैं आज भी कह रही हूं कि मुझे वायदे बड़े नहीं करने, काम ज्यादा करना है. जिस एक साल की बात मैं कह रही हूं, जो आपने मेरे मुख्यमंत्री बनते ही मुझसे प्रश्न किए थे, आज यहां मैं बैठ करके आपको उन सारे सवालों का जवाब दे रही हूं कि मैंने क्या क्या किया. मेरे हाथ में अपना काम करना है, दिल्ली को बेटर फ्रेमवर्क में लेके आना है, उन पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूशन को करना है, मेरा दायित्व है. उसके बाद में रिजल्ट आना जनता पे, लोगों की इन्वॉल्वमेंट पे और नेचर पे डिपेंड करता है. पर एक भी सेक्टर छूटा नहीं है जिसपे हम काम कर रहे हैं. हमने कूड़े के पहाड़ कम किए, हमने वाटर बॉडी को रिवाइव किया, हमने वॉल टू वॉल रोड्स बनाकर डस्ट मिटिगेशन किया, हमने प्लांटेशन के साथ में ग्रीन कवर बढ़ाया, हमने फॉरेस्ट नोटिफाई किए, हर एक सेगमेंट पे काम हो रहा है. तो दिल्ली आगे बढ़ रही है, दिल्ली पॉल्यूशन कम करने की दिशा में रोज एक कदम आगे बढ़ाती है.
2: और मैंने इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द इंटायर इंटरव्यू में मैंने आपसे बोला था कि मैं ये बेबाक बोल सकती हूं दैट इट्स अ गुड पॉलिसी इफ इम्प्लीमेंटेड वेल. तो मैं यही जानना चाह रही हूं कि इससे पहले भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन कॉन्क्रीट एक्शन तो तभी माना जाएगा जब पोल्यूशन कम होगा, आई एम श्योर. ये सब
5: आप
2: करने
5: भी
2: के
5: यही है, मैं भी यही हूं, हम लोग देखते हैं. अगर कम होता है वो भी समझ में आएगा, और कहां कमी रहती है तो उसके आगे बढ़ेंगे. आज जितना हम कर रहे हैं, क्या पिछली किसी सरकार ने इतना किया? ऑड इवन, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, इंजन ऑफ, इसके अलावा क्या किया पिछली सरकारों ने? ईवी पॉलिसी लेकर के आए पर उसकी सब्सिडी नहीं दी, उस सब्सिडी को भी हमारी सरकार ने आने के बाद पे किया है. अगर हम चाहते तो वो पेमेंट ना करते पिछली सरकार के टाइम की. पर जनहित में 45 करोड़ रुपए वर्तमान की सरकार ने पिछली सरकार की लायबिलिटी को पे किया. तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इस शहर को बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं. तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि दिल्ली की जनता जो चाहती है, हम वो काम कर रहे हैं. आज एक्चुअल में ये एफर्ट हो रहे हैं.
2: आई अग्री विद यू मैम, आई अग्री विद यू ऑन वन थिंग कि आप इस समय बहुत ही यूनिक टाइम पे चीफ मिनिस्टर बनी हैं. दिल्ली सरकार बीजेपी की है, नेबरिंग स्टेट्स बीजेपी के हैं, एलजी आपका साथ देते हैं, सेंटर बीजेपी का है. यू हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रियली चेंज द फेस ऑफ दिल्ली. यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी. I want to understand what are your top three priorities, things that you want to leave as Rekha Gupta's legacy. Ki ye teen cheeze aapne badli apne samay par, jo aap karna chahti hain personally.
5: Main Delhi ki janta ke liye chahti hoon ki Delhi shahar mein waste management, नंबर वन प्रॉपरली होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं था. आज दिल्ली शहर में यदि 14,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज जनरेट हो रहा है तो उसका डिस्पोजल केवल 6,000 मीट्रिक टन हो रहा है. वेस्ट मैनेजमेंट को पूरी तरीके से इफेक्टिव करने के लिए मेरी पहली प्रायोरिटी है.
2: जी.
5: सेकेंडली, हमारा जो सीवेज का सिस्टम है वो आज भी आधी दिल्ली में सीवर की लाइनें नहीं है, जो कि कारण बनती है यमुना की गंदगी का. पूरी तरीके से दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज लाइनों को लाइनअप करने की जरूरत है. पूरा का पूरा सिस्टम चैनलाइज करने की जरूरत है, जिससे सीवेज प्रॉपरली डिस्पोज हो और यमुना गंदी ना हो. ये मेरी सेकेंड प्रायोरिटी. और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, उसमें स्कूल आते हैं, उसमें हॉस्पिटल आते हैं, उसमें हमारे रोड्स आते हैं, ड्रेनेज आती है, इन सबको बेहतर करें तो मुझे लगता है कि दिल्ली वालों का दिल जरूर खुश होगा और दिल्ली के लिए मैं वो कर जाऊं जो आज तक नहीं हो पाया.
2: चलिए मैम, यू हैव अ वेरी एस्पिरेशनल एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. मैं यही कहूंगी कि दिल्ली वालों की तरफ से, मैं देखिए बाहर की हूं, मैं यहां पर काम करती हूं, मेरी कर्म भूमि है दिल्ली, मैं अपने बच्चे यहां पालती हूं, तो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी रियली वॉन्ट दिल्ली टू डू वेल. एज अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, आपको लगता है यहां की हवा ठीक नहीं है, यहां का पानी ठीक नहीं है, सड़क पे ट्रैफिक है, कई सारे लोग हैं, एक्सपैट्स भी हैं, जो अब दिल्ली में या भारतवर्ष के बारे में नहीं सोचते हैं उस तरह से, क्योंकि उनको लगता है यहां क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है. उस एक चीज को अगर आप चेंज कर सकती हैं, सो आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट गेम चेंजर यू और एनीबडी एल्स कैन मेक. सो विद दैट आई लीव यू. एक आखिरी में आपसे क्या एक और चीज पूछ सकती हूं, मैंने ऑफ लेट नोटिस करा है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो गई हैं. या आई सी दैट यू आर मेकिंग रील्स, यू अप्रोच इट एंड यू हैव गॉट अ वेरी नाइस कैंडिड वे ऑफ स्पीकिंग टू पीपल. ये डिलिबरेट एफर्ट है टू रीच आउट, ये क्या सोच के कर रही हैं आप? मैंने आपसे पहले किसी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ऐसे, दे आर गुड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स मोटिवेटेड यू.
5: देखिए, मैं दिल्ली की बेटी हूं और दिल्ली की प्रॉब्लम, दिल्ली के लिए सॉल्यूशन जानती हूं और मैं जनता के बीच में से आई हूं और जनता के बीच में रहना चाहती हूं. लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, मैं जनता की मुख्यमंत्री हूं तो लोगों के बीच में रह के उनको सुन के उनकी बातों को जान करके काम करना चाहती हूं. तकलीफ जरूर हो सकती है क्योंकि इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने किया नहीं कि आप लोगों के बीच में डायरेक्टली जाइए, उनसे पूछिए, बात कीजिए, कहीं किसी नाले की सफाई
2: सब करते थे, केजरीवाल ने भी
5: किसी नाले की सफाई पे किस मुख्यमंत्री को आपने खड़े हुए देखा कि किसी सड़क के बनने पे किस मुख्यमंत्री को खड़े हुए देखा, रात को, दिन में, सुबह, यमुना की सफाई से लेकर के कूड़ा, हर चीज जनता से जुड़ा हुआ जितने भी विषय हैं मैं उसमें इन्वॉल्व हूं, मैं उसका सॉल्यूशन चाहती हूं. जनता के साथ मिलकर के दिल्ली को बेहतर करना है, दिल्ली को संवारना है.
2: ऑल राइट, रेखा गुप्ता, गुड लक, थैंक यू सो मच. लाइक आई सेड, एनी फॉर टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस डिस्पाइट नोइंग कि हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम कर रही हैं. आई लाइक दैट. थैंक यू सो मच. दिस इज अ गुड चैट.
5: थैंक यू सो मच.
1: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे.
6: No.
7: Oh, no.
8: Welcome to Get Real.
6: I got something to say.
8: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
7: Oh, my God.
6: It's got to be deliciously desperate.
9: Why do these girls forgive him?
10: She has a soft spot for troubled men.
6: Boo bloody who?
8: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
7: Love runs deeper than we know.
8: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.

0: मम्मी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی.
1: I say clearly that these riots and insecurities were designed by America and the uprising and the fake Zionist regime.
0: نیستی و دنبال روای اونها.
2: This year, in January, economic hardships prompted thousands of citizens to raise a banner of revolt. But they too were brutally crushed. The official death toll was more than 3,000. The actual toll, much, much more.
1: Last night in Tehran and some other places, a bunch of vandals showed up and destroyed buildings belonging to their country just to please the US president.
2: The supreme leader who never bent is gone, leaving behind a heavily armed, deeply scarred nation. Ayatollah Ali Khamenei leaves behind a fortress built on regional defiance, but it is a fortress cracked from within by economic ruin and domestic fury. Bureau Report, India Today.
3: The visuals tell you a story of mourning, of identity, of national pride. Flags, portraits being held by various people clearly show the collective grief this country is witnessing, with people coming from across the world and expressing what they feel Iran has become today. Those are not just words. They are optics as well and visuals as well, very, very clearly sending out a strong message to the world. Madam Marzia, thank you so much for speaking to India Today. You've come all the way from England.
4: Yeah, I came from UK. I'm living in UK.
3: Why have you made the effort to come over here, and what's your message?
4: To support my people and to support my country against the oppression of the American and Israelis. I came to support my country. Yes, I came from a long, long way to come to say we are all united and we are a people. We never leave our country, our civilization. It's not a civilization for forefathers, and nobody can destroy it. The person who wants to destroy it is destroying himself and destroying their own economy and destroying their own people. And I'm here to support my country.
3: Do you think today Iran stands stronger and taller than ever
4: before? Definitely, definitely. We've been always stronger, but maybe the world didn't know and didn't realize this. And now they're realizing we are strong, we are united. And can you see the people get closer to each other and they feel more sympathy and more passionate about their own country. And we are, definitely we are stronger now.
3: Final message to the people and the world who look at Iran and they say, oh, it's a country that's...
4: You know, you have to stand on your feet, and you mustn't be scared of the people who are once too. In one night, they take all the resources of the Venezuela and other countries, and they believe they can rule the world like that. No, they have to stop. It's a stop of the oppression of the American and Israelis. And Israelis must understand it's not possible to kill people in Gaza, to genocide in Gaza and stand out like that. It doesn't work anymore. You have to come. Maybe the people, intellectual people, who live as a Jewish, Christian, Muslim, they have to understand the world, the rules in world is different with what they say in the media, what they say in Fox News, or when they stand up in one place and they rule all the world by oppression. It's finished.
5: पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई के संस्कार को दूसरा दिन है, लगातार उसकी तैयारियां चल रही है, लेकिन अब तैयारियां दूसरे फेज में जाने वाली है, यानी दो दिन के बाद अब तेहरान से उनके पार्थिव शरीर को कुंभ ले जाया जाएगा। इसके लिए यहां तैयारियां पूरी हो रही हैं। अगर आप देखें, बीच बीच में ऐसे पैसेज बनाए गए हैं, खासतौर पर ये वो इलाके हैं जहां से वो सारे के सारे सैलाब या जो लोगों का जो मातम का जो उनका लोगों का जो रैली निकलेगी या लोग निकलेंगे वो इसी रास्ते से होकर निकलेंगे, और शायद इसी वजह से इन रास्तों के ऊपर बड़े बड़े आप कह सकते हैं ऐसे इवैक्यूएशन के रेस्क्यू किट वो भी निकाली गई और लोगों का जो जत्था निकलेगा पोजीशन निकलेगा वो इन्हीं जगहों से निकलेगा और उसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई। बीच बीच में ऐसे स्टेज लगाए गए हैं जहां पर लगातार मीडिया के खड़े होने की जगह होगी, जहां पर मीडिया खड़ी हो सकती है और बाकी लोग आसपास से निकलते हुए जाएंगे। और ये पूरे पैसेज को आप देखें कि वो पीछे की तरफ जो है वहां पर है आपका जो ग्रैंड मुसल्ला है वहां पर मौजूद है और वहीं से जो पोजीशन है या फिर जो जत्थे हैं वो लोगों के वहां से निकलने शुरू होंगे और फिर धीरे धीरे इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए निकल जाएंगे। यानी आप मानिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल सड़कों पर करोड़ों की संख्या में कहा जा रहा है कि करीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे जो इसी जत्थे में आगे चलते रहेंगे। सबसे पहले उनका पार्थिव शरीर होगा, उसके साथ उनके जो बाकी के परिवार के लोग हैं जो मारे गए थे उस पूरे अटैक में वो भी उसमें शामिल होंगे और उसके बाद यही जत्था आगे निकलता हुआ चला जाएगा।
6: आई थिंक ये बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट था और बहुत ही दुखी था बिकॉज आपने देखा ईरान के लोग बहुत गमजदा हैं, मौन कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मैं देखती हूँ कि जो इमाम खामनाई साहब की जो शहादत हुई है उसने न सिर्फ ईरान को इकट्ठा किया, जोड़ के रखा, बल्कि जो पूरी जो दुनिया के जो मुसलमान हैं जो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं उनको भी एक साथ लाया और लोगों को, यहाँ के लोगों को उनकी शहादत ने इतनी हिम्मत दी कि उन्होंने अमेरिका जैसा सुपर पावर उसको घुटनों पे लाया और दिखा दिया कि आपको जंग लड़ने के लिए कोई न्यूक्लियर पावर या कोई बड़े बड़े हथियारों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में हिम्मत होगी, अगर आप में डिटर्मिनेशन होगा, रेजिलियंस होगा, तो आप बहादुरी से बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं।
7: क्योंकि जम्मू कश्मीर के बहुत लोग आते हैं खास तौर पे, ऐसे में क्या कुछ आपको, क्योंकि सलमान खुर्शीद साहब भी बता रहे थे कांग्रेस की तरफ से एक पत्र वो लेकर आए हैं अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए, क्या आपने भी कुछ ऐसे संवेदना व्यक्त करने के लिए कुछ पत्र दिया या आपको लगा कि ईरान की तरफ से कुछ ऐसा संदेश जो भारतवासियों को दिया जा सके?
6: बिल्कुल, मैंने एक लेटर दिया है जो आगा मुश्तबा खामनाई साहब हैं उनके लिए मैंने लेटर भेजा। मैंने उनको बोला कि हमारा मुल्क आपके साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं हमारे और हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो ईरान की लीडरशिप ने अक्लमंदी से काम लिया और पूरे मुल्क को जंग के माहौल से न सिर्फ कामयाब बनाया बल्कि जो डायलॉग हुआ, जो पीस डील हो गई, उसमें भी ईरान की विन विन सिचुएशन है, तो इसके लिए हम उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनकी रेजिलियंस के लिए, उनकी बहादुरी के लिए। और साथ में ये कि हमारे मुल्क के रिश्ते तो हैं ही, पर जो कश्मीर है जिसको ईरान सगीर कहा जाता है, यानी छोटा ईरान, तो वहाँ से भी मैं लोगों की जो है पैगाम लेके आई हूँ, कंडोलेंस इनकी फैमिली को, यहाँ के लोगों को, और हम हमेशा हमारे जो है रिश्ते इस मुल्क के साथ, ईरान के साथ बने रहेंगे।
8: The 1979 revolution changed the course of history for Iran. This moment where the supreme leader was slain by US and Israel is going to change the course of the future of Iran. What we are witnessing today is an Iran that is expressing its

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: चोरी अभी आप चोरी हो रही है उधर, आपके कंट्रोल में है ना ये ट्रस्ट
3: जी।
2: हम तो नहीं है, किसी को आपने लिया ही नहीं है उसमें, आपके सब लोग बैठे चोर मंडल, तो ये जिम्मेदारी आपकी है और आरएसएस ने भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चोरी की एक्शन होगी, मीन्स क्या होगा, जो छोटी मछली है उसको पकड़ लेंगे, बड़ी मछली को छोड़ देंगे। वहां अयोध्या में एक प्रकार से गैंगवार चल रहा है, अंडरवर्ल्ड एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें तान कर लोग खड़े हैं, ट्रस्ट में भी और अयोध्या में भी कब्जा करना चाहते हैं। वहाँ राम की अयोध्या के ऊपर कुछ लोग अपना कब्जा करना चाहते हैं।
4: उस मंदिर पे कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं, उस मंदिर पे कंट्रोल इस देश के लोगों का है। और जब हम सुनते हैं 40% पैसा ये चोरी हो गया या भ्रष्टाचार हो गया, ये गलत चीज है। जो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ जो ट्रस्टीज है, ट्रस्ट में जो भी लोग है बहुत पावरफुल है, उन्होंने वहां पे करप्शन किया, इसलिए हम सबकी मांग है सबके ऊपर वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए।

0: been played around with in this very scam. Let's quickly listen into what Uddhav Thackeray had to say on the matter.
1: Ayodhya to jhaki hai, Kashi Mathura baki hai. आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील. अटलजी जे बोलले होते, अब हिंदू मार नहीं खाएगा, लेकिन हिंदू को लुटने वाली सरकार वहां बैठी है. हे दुर्भाग्य है आपलं, हे दुर्भाग्य है. म्हणून मी आज तो परत नारा बुलंद करतोय. जेव्हा हिंदू भीतीग्रस्त होता आणि कोणालाही हिम्मत होत नव्हती की हिंदू मी हिंदू आहे बोलायची, तेव्हा शिवसेना प्रमुख गरजले होते, गर्व से तो हो हम हिंदू है. ते हिंदू तुम्हाला आज पुन्हा जागा करायचे. हा हिंदू हा काही वेडा नाहीये.
0: So now there's more breaking news coming in, and this is from the BJP side, because as we were telling you earlier, war of words of course continues from both ends. BJP chief Nitin Nabin has now hit back at the opposition over the donation theft case. He says some people are raising questions about the discourse surrounding it. These are the same people who question the very existence of Lord Ram. They question the existence of the Ram Setu. These are the same people who opened fire on Kar Sevaks, causing rivers of blood to flow. Those who shed crocodile tears can never truly speak for the faith of Hindus. He adds, even if we have to shed our own blood, we'll ensure that no one plays with the faith associated with Lord Ram's temple. We're prepared to make whatever sacrifice is required. However, regarding these anti-Hindu forces, if they're trying to score political points today, let me say this clearly to Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav and Kejriwal. Do not underestimate Hinduism by thinking we will fall for your ruses or be misled by your deception. Take a look as to what Nitin Nabin has said.
2: ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है. उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था. ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर. आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था के पर बात उठा ही नहीं सकते.
0: So on that note, viewers, this is what Nitin Nabin has to say. Remember, just a little while back, we were also bringing to you what Uddhav Thackeray has added to that very tirade that has been launched by the opposition at the BJP. We have been keeping a track of the politics that's been blowing over this entire case. There is RSS, there is the BJP, both of which has been blamed at this given point of time with regards to this entire episode. And the opposition has demanded that and come out to mount their attacks over the BJP about this, that yes, you're playing with the sentiments of Hindus, the same Hindus that you do say that you're protecting at the end of the day, you pledge to protect at the end of the day. But on the other side, the BJP has also come out to launch its defensive since day one. Let's bring in Santosh Sharma into the conversation here to get more details on this. Santosh, very good evening to you. Sabse pehle, अभी नितिन नबिन का यही कहना है कि भले ही ऑपोजिशन अभी जो भी कह रही हो हमें अटैक करने के लिए, एट द एंड ऑफ द डे वो खुद एंटी हिंदू एलिमेंट्स हैं और इसीलिए वो इस चीज को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि हम अपने तरफ से सब कर रहे हैं जिससे लोगों की जो आस्था है उस पर किसी तरीके का चोट ना पहुंचे और वो डाउट जो है इस पूरे स्कैम से जो पैदा हुई है लोगों के दिमाग में वो कट जाए, वो मिट जाए.
3: देखिए बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय दौरे पर थे. उन्होंने इस पर जो विपक्ष अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी को घेर रहा है लगातार, खास करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों की चोरी हो रही थी, सरकार क्या कर रही है, ये भाजपा के लोगों ने सिर्फ राम के नाम पे राजनीति की है, उसका जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है कि हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो अपने दामन पर नहीं देखा है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, जो राम मंदिर निर्माण के विरोधी थे, जो राम मंदिर आंदोलन के विरोधी थे, जिन लोगों ने हमेशा राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने राम सेतु को नकारा, उन लोगों के ऊपर उन लोगों के द्वारा ये आक्षेप लगाए जा रहे हैं. तो ये वजह थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने

0: People are raising questions about the discourse surrounding it. These are the same people who question the very existence of Lord Ram. They question the existence of the Ram Setu. These are the same people who opened fire on car sevaks, causing rivers of blood to flow. Those who shed crocodile tears can never truly speak for the faith of Hindus. This is what's been said by the BJP chief. This is just an excerpt of what he said. Take a look as to the entirety of the remarks made by him over the matter.
1: ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था के पर बात उठा ही नहीं सकते।
0: संतोष शर्मा जॉइनिंग मी ऑन द ब्रॉडकास्ट विथ मोर ऑन दिस। संतोष, आप इस कमेंट को जो अब नितिन नबिन की तरफ से आ रहा है ऑपोजिशन की तरफ, क्योंकि ऑपोजिशन लीडर्स दिन प्रतिदिन एक एक करके एविडेंस एलिगेशंस ला रहे हैं कि और भी चीजें मिसिंग हैं, और इसके ऊपर एक बड़ा डिबेट भी हो चुका है कि हिंदूज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे बीजेपी और आरएसएस, तो ये जो नितिन नबिन ने आज कहा है इसको हम कैसे देखते हैं?
2: देखिए, नितिन नबिन ने वो काउंटर किया है जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और खासकर समाजवादी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबिन के निशाने पर थी। उन्होंने सीधे से कहा कि जो लोग राम मंदिर के आंदोलनकर्ताओं के ऊपर गोली चलाने वाले हैं, जो राम सेतु के अस्तित्व को नकार रहे थे, वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी सीधे बीजेपी अध्यक्ष के निशाने पर थी, तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से एक काउंटर अटैक है। अभी तक तो समाजवादी पार्टी ही बीजेपी के ऊपर हमलावर थी कि चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर वो बीजेपी को काउंटर कर रही थी कि बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी की सरकार में श्रद्धालुओं की जो चढ़ावा है वो चोरी हो रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी, बीजेपी सरकार क्या कर रही थी, क्या ट्रस्टी कर रहे थे, क्या बीएसपी कर रही थी। लेकिन अब ये बीजेपी की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अब बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्षों की दो दिवसीय दौरे पर थे नितिन नवीन, तो आज उन्होंने ये समाजवादी पार्टी को जवाब दिया है कि जो लोग कार्यकर्ताओं पर गोली चला रहे थे, खून की नदियां बहा रहे थे, वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो ये काउंटर अटैक है बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी की ओर पर, जो समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रही थी, बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी। जी
0: जी बिल्कुल संतोष, और ये जो मुद्दा है यही खत्म नहीं होता, आप हमारे साथ बने रहिए। व्यूअर्स, देयर इज मोर दैट्स नाउ कमिंग इन, बिकॉज दिस वॉर ऑफ वर्ड्स ओनली एस्केलेट्स वन वे एंड दैट इज स्नोबॉलिंग इनटू अ वाइडर डिबेट। लेट्स टेक अ लुक एज टू व्हाट मोर आर वी लर्निंग हियर। So after the Nitin Nabin attacks, the opposition leaders that we just heard the remarks from Nitin Nabin over the allegations and sharp statements on Ram Mandir donation theft case, we see Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has now come out to take a dig at the BJP president, saying that he has arrived in the city for the first time since becoming the president. Why isn't he going to the Ram temple to pay his respects? It's almost a mockery of sorts that we see instead of an all-out dig at this given point. Santosh Sharma continues to be with us. Santosh, agar hum is remark ko dekhe jo Akhilesh Yadav ne kahi hai ki ye pehli baar hai BJP president banne ke baad jab Nitin Nabin is shehar mein aaye hain to wo Ayodhya temple ja ke pooja kyun nahi dete, ab agar hum is statement ko dekhe to zarur isme ek mockery ka ek tone nazar aata hai।
2: देखिए, ये कटाक्ष है, ये मौकरी है, और जो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने जब समाजवादी पार्टी के ऊपर हिंदू विरोधी कार्यकर्ताओं पर गोली चलाने वाला स्टेटमेंट दिया, तो उसके बाद से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये काउंटर अटैक है। और ये समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने काउंटर अटैक किया कि जब लखनऊ आए थे, पहली बार आए थे, तो रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव भी राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए, जिसको लेकर बीजेपी शुरू से हम

0: चोरी, अभी आप चोरी हो रही है उधर, आपके कंट्रोल में है ना ये ट्रस्ट, हम तो नहीं है, किसी को आपने लिया ही नहीं है उसमें, आपके सब लोग बैठे चोर मंडल, तो ये जिम्मेदारी आपकी है और आरएसएस ने भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए चोरी की। एक्शन होगी मीन्स क्या होगा, जो छोटी मछली है उसको पकड़ लेंगे, बड़ी मछली को छोड़ देंगे। वहाँ अयोध्या में एक प्रकार से गैंगवार चल रहा है, अंडरवर्ल्ड, एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें तान कर लोग खड़े हैं, ट्रस्ट में भी और अयोध्या में भी, कब्जा करना चाहते हैं वहां राम की अयोध्या के ऊपर, कुछ लोग अपना कब्जा करना चाहते हैं।
1: उस मंदिर पे कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं, उस मंदिर पे कंट्रोल इस देश के लोगों का है। और जब हम सुनते हैं 40% पैसा ये चोरी हो गया या भ्रष्टाचार हो गया, ये गलत चीज है। जो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ जो ट्रस्टीज है, ट्रस्ट में जो भी लोग है बहुत पावरफुल है, उन्होंने वहां पे करप्शन किया, इसलिए हम सबकी मांग है सबके ऊपर वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए।
2: Two world wars, the Cold War, left America's enemies in the depths of history. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice.

आज हम राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन यहां कर रहे हैं। हमने 2017 में इसके लिए एमओयू साइन किया था, लेकिन 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही। कांग्रेस के असहयोग के कारण यहां का काम लगभग ठप ही रह गया, लेकिन जैसे ही डबल इंजन सरकार आई, इसका काम तेजी से आगे बढ़ा और आज हम इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं मेरी कार्यशैली, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं।

0: man in Kurla, Yunus, fell prey to monsoon fatality when a massive tree crushed his shop.
1: ये पेड़ के एक बीच की फांदी थी जो कि बहुत ही मजबूत फांदी थी और अंकल जी जो क्या नाम था उनका यूनिस भाई वो बाइक से आए और दुकान का सामान रखने के लिए सेटर वेटर वो बाइक से उतर ही रहे थे और फांदी डायरेक्ट उनके मुंह पे जाके गिरी और मुंह पे गिरने के वजह से वो डायरेक्ट नीचे जमीन पे गिर गए।
2: हमारे यहाँ के नगर सेवक आरोग्य समिति के अध्यक्ष उन्होंने दो बार प्रशासन को पत्र भी दिया था कि ये डेंजर जोन में लग रहा है पेड़, लेकिन प्रशासन ने उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की ये इंक्वायरी का पार्ट है। इसके ऊपर हम लोग पूरी इंक्वायरी लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम उनकी फैमिली के साथ यहाँ पे खड़े हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उनको 5 लाख का जो अर्थसहाय है वो भी मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ।
0: It comes just days after 11-year-old Vihan Srivastava was killed when an old, allegedly inspected and a healthy tree collapsed right onto his moving bus in Chembur. And the absolute breaking point, in Sakinaka, a 55-year-old man fell to his death into an open manhole which was being cleaned then. From deaths in tree collapse to dying in manhole, the price of administrative apathy is being paid in Mumbaikar blood. The red alert will eventually pass, but the scars of this preventable tragedy will remain. With Mustafa Sheikh in Mumbai, Bureau Report, India Today.

0: Next Friday is my last working day. So I thought, before leaving, it's my duty to tell you all how to survive corporate without losing your mind.
1: A woman who recently resigned from her corporate job has gone viral after sharing practical advice on surviving office life without burning out.
0: Finished my last week very, very peacefully. Please. Thank you. Now I'm going to tell you what I can do for 2 years. Corporate rule number one. Take that damn leave. You have 24 hours for your company. So no. सारी पेड़ लीव एक बार भी अपने दिमाग में ख्याल आप नहीं आने तो कि मैं ज्यादा छुट्टी तो नहीं लिया. नहीं, क्या करोगे छुट्टी का, स्पेशली अगर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है और ना उसका कैश में कन्वर्जन हो रहा है तो तुम्हें छुट्टी लेना बंद. मतलब भाई फ्लोटर लीव भी नहीं छोड़नी है. जो दो मिलते हैं फ्लोटर लीव, तुम ईस्टर बनाओ, तुम मुहर्रम बनाओ, तुम दिवाली बनाओ, दो फ्लोटर लीव भी लो. वो पूछेंगे कि तुम क्यों बना रहे हो, तुम तो अरे हमारा मन के हम बनाने लगे. भाई थोड़ा शांत हो जाते हैं पहले. रूल नंबर टू, कॉर्पोरेट लैंग्वेज सीखो. काम बाद में सीखा जा सकता है बट पहले तुम कॉर्पोरेट लैंग्वेज सीखोगे. अगर तुमसे किसी ने पूछा कि इसका क्या प्रोग्रेस है, क्या तुमने ये देखा, कभी ये मत बोलना कि मुझे नहीं पता, ये क्या बात है. नो.
1: Her relatable tips on boundaries, mental health and work-life balance resonated with professionals across social media.
0: मंद बुद्धि हो, आइडिया ही नहीं है क्या बात करें. Let me check and get back to you. Easy. बहुत सारे कॉर्पोरेट कीवर्ड्स हैं, टेंशन मत लो. तुम बस कमेंट सेक्शन पूछो, मैं धड़ाधड़ लिख दूंगी. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत जरूरी टिप दे रहे हैं. कभी भी फ्री नहीं दिखना है ऐसे पूरे टाइम. गेम खेलो आराम से, बट फ्री मत दिखो. कोई भी कहीं से भी, सबकी नजरें तुम पे ही होती है. कोई भी आके धड़ाम से आपको काम दे देगा और आप उधर गए. रूल नंबर थ्री, डांट आपको पड़ती रहे. आप समझ लो कि आप एकदम एक्सेप्शनल वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है. और अगर आपने कर भी दिया तब भी आपको डांट पड़ेगी. डांट कॉन्स्टेंट, बट आपको एक मोटा चमड़ा बचाना है. एक कान से सुने दूसरे कान से निकलो. वो काम ठीक कर लो बट ध्यान मत दो. बोलते रहेंगे वहाँ पे, सब बोलते रहेंगे. ऐसा नहीं कि भाई फ्राइडे को डांट पड़ा संडे तक एकदम रोना धोना. नहीं भाई, फ्राइडे को पड़ा उधर ही छोड़ा और आगे बढ़ो. यही सब आपको खुश रखेगा. वरना आपने सीरियसली लेना शुरू कर दिया इन कौड़ी के लोगों को तो आप कहे मेरी कंपनी के एचआर ने देख लिया तो समझ जाना मेरी नोटिस पीरियड हो गई है कम और हम जा रहे हैं अर्ली वेकेशन. ओके बाय.
1: An Indigo employee who is deaf and mute has touched hearts after a passenger praised his warm smile and seamless assistance at the baggage check-in counter.
2: और मैं इसलिए कम्युनिकेट कर रहा हूँ ब्रो इनसे. इजीली मैंने अपना होगा बोर्डिंग पास भी दे दिया. थैंक यू.
1: The wholesome interaction highlighted professionalism, inclusion, and the power of communication beyond words.
2: Lovely, yeah.
1: Gurugram-based chartered accountant has reignited the cost of living debate after explaining why earning 1 lakh rupees a month no longer feels financially comfortable. His detailed expense breakdown struck a chord with many middle-class professionals facing rising everyday costs.
3: A spectacular lightning strike hitting the Eiffel Tower during a powerful thunderstorm has gone viral across social media. While the dramatic visuals stunned viewers worldwide, experts explain that the iconic moment is specially designed to safely withstand such lightning strikes. A residential community in China's Shaanxi province has introduced a rooftop mist cooling system that lowers temperature by up to 8 degrees within minutes. The innovative technology has gone viral as an effective solution for tackling extreme summer heat. A 14-year-old boy in Paris has sparked outrage after multiple viral videos showed him spraying cyclists and police officers with a water pistol and allegedly pushing a woman into a canal. The incident has triggered political debate and widespread criticism online. An e-rickshaw driver was allegedly forced to push his vehicle for nearly 3 kilometers after pranksters remotely disabled it using a mobile app. The viral incident sparked anger online, with users condemning content creators for targeting hard-working drivers for entertainment. Alia Bhatt and Sharvari have set social media buzzing after teasing songs from their upcoming film Alpha during road appearances in Mumbai and Jaipur.

0: मैं ब्राजील में राजदूत था, मैं बात कर रहा हूं 2006 से लेकर 2008, उस समय शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, शायद उससे पहले या बाद में, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: जो E20 का माइग्रेशन हुआ है वो काफी कैलिब्रेटेड रहा है और काफी टेस्टिंग और सब कुछ देख के किया गया है, और उसमें काफी मतलब कि सोच समझ के सब फैक्टर्स को देख के गवर्नमेंट ने, टेस्टिंग एजेंसीज ने टेस्टिंग करने के बाद इसको लागू किया है। 2023 के बाद में जितनी भी गाड़ियां बिक रही हैं वो E23 मटेरियल कम्प्लायंट है, E20 मटेरियल कम्प्लायंट है, और उससे पहले भी जो गाड़ी थी उनके टेस्टिंग से ये दिखा कि गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप E20 डालते हैं।
2: हमने पिछले साल में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में करीब 1.5 करोड़ ऐसी गाड़ियां सर्विस की होंगी अपने हमारे मारुति नेटवर्क में, कस्टमर्स की गाड़ियां जो 2023 से पहले की थी, जो E10 कंप्लायंट थी, E20 नहीं थी
3: जी।
2: लेकिन उनमें हमने ऐसा कोई इश्यू नहीं ऑब्जर्व किया, ऐसा कोई मीनिंगफुल कंसर्न नहीं आया जो E20 से रिलेटेड हो। ये हो सकता है कि फ्यूल एडल्ट्रेशन की वजह से कोई बहुत ही लिमिटेड पंप्स, लिमिटेड सिटीज में केसेस हो, लेकिन फ्यूल एडल्ट्रेशन का कोई बिल्कुल अलग फिनोमेना है, वो इंडिया में काफी टाइम से था, अभी भी है और रेगुलरली सॉल्व होता रहता है, उसका E20 से कोई लिंकेज नहीं है।
3: देखिए, जो भी E20 लॉन्च हुआ है दिसंबर 25 में, वन नेशन वन गैसोलीन फ्यूल है ना, इसमें अलग अलग पहले कुछ रीजन्स में आया, फिर इट हैज कम टू एवरी रिटेल आउटलेट। इसकी बुनियाद जो है वो एक्सटेंसिव टेस्टिंग पे हुई है, रिगरस टेस्टिंग जो कि बोथ फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर इंजन्स पे हुई है, उसकी बेस आउटकम पे E20 हैज बीन लॉन्च्ड ऑन पैन इंडिया बेसिस।
4: And it was a big day for another celebrity couple. Well, who are we speaking about? Bollywood star Aamir Khan, who's tied the knot with longtime partner Gauri Spratt in an intimate ceremony at his Bandra residence in Mumbai, surrounded by friends and family. And this is how the couple exchanged the vows after more than 2 years of being together, with several familiar faces, of course, from the film industry attending the private celebration. This is the visuals that have come out of that very celebration. Take a look as we leave you with it.
5: As my lawful wife.
6: Watching India Today.
7: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.

0: राम के नाम पर तो वोट लिया, पर राम का नाम बदनाम हो रहा है। अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी खुलासे हुए हैं कि वहां भी चंदा चोरी हुआ है। ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में। और चंदा चोरी तो बिल्कुल साफ हुआ है, हजारों करोड़ का चंदा चोरी हुआ है उत्तर प्रदेश में, और अंदर से ही ये सब जानकारी आ रही है।
1: अगर वो आरएसएस और वीएचपी को जिम्मेवार ठहरा रहे लूट में, तो उनको एसआईटी ने समन करना चाहिए, उनका बयान रिकॉर्ड करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये किस आधार पे कहा, ये कहने का क्या कारण हुआ कि आरएसएस ने या वीएचपी ने इस लूट में कोई हिस्सा लिया है। और अगर ये बयान सिरे से झूठा है तो सनसनीखेज और असंतोष और गुस्सा भड़काने वाला बयान है, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और उनको भी दंड मिलना चाहिए।

0: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। जो एक हेनरी फोर्ड था, जो फोर्ड मोटर कंपनी का मालिक था, उसने उस समय गाड़ी चलाई है बायोफ्यूल से, केरोसिन से, फॉसिल फ्यूल से। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने। मुझे याद था जब मैं ब्राजील में राजदूत था, मैं बात कर रहा हूं 2006 से लेकर 2008, उस समय शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, शायद उससे पहले या बाद में, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: जो E20 का माइग्रेशन हुआ है वो काफी कैलिब्रेटेड रहा है और काफी टेस्टिंग और सब कुछ देख के किया गया है, और उसमें काफी मतलब कि सोच समझ के सब फैक्टर्स को देख के गवर्नमेंट ने, टेस्टिंग एजेंसीज ने टेस्टिंग करने के बाद इसको लागू किया है। 2023 के बाद में जितनी भी गाड़ियां बिक रही हैं वो E23 मटेरियल कंप्लायंट है, E20 मटेरियल कंप्लायंट है, और उससे पहले भी जो गाड़ी थी उनके टेस्टिंग से ये दिखा कि गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप E20 डालते हैं।

0: already completed in 4 months. That has been the heavy downpour, and hence it is a healthy advice that be careful while they are out.
1: But beyond the waterlogged roads lies a far deadlier story. An 18-year-old boy was killed after a tree branch snapped and struck him while he was riding through RA Colony in Goregaon East during heavy rain. He was rushed to a nearby hospital but succumbed to his injuries, adding to the growing list of rain-related deaths in the city. Hours earlier, a 63-year-old man in Kurla, Yunus, fell prey to monsoon fatality when a massive tree crushed his shop.
2: ये पेड़ के एक बीच की फांदी थी जो कि बहुत ही मजबूत फांदी थी और अंकल जी जो क्या नाम था उनका यूनिस भाई वो बाइक से आए और दुकान का सामान रखने के लिए सेटर वेटर वो बाइक से उतर ही रहे थे और फांदी डायरेक्ट उनके मुंह पे जाके गिरी और मुंह पे गिरने के वजह से वो डायरेक्ट नीचे जमीन पे गिर गए।
3: हमारे यहाँ के नगर सेवक आरोग्य समिति के अध्यक्ष उन्होंने दो बार प्रशासन को पत्र भी दिया था कि ये डेंजर जोन में लग रहा है पेड़, लेकिन प्रशासन ने उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की ये इंक्वायरी का पार्ट है। इसके ऊपर हम लोग पूरी इंक्वायरी लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम उनकी फैमिली के साथ यहाँ पे खड़े हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उनको 5 लाख का जो अर्थसहाय है वो भी मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ।
1: It comes just days after 11-year-old Vihan Srivastava was killed when an old, allegedly inspected and a healthy tree collapsed right onto his moving bus in Chembur. And the absolute breaking point, in Sakinaka, a 55-year-old man fell to his death into an open manhole which was being cleaned then. From deaths in tree collapse to dying in manhole, the price of administrative apathy is being paid in Mumbaikar blood. The red alert will eventually pass, but the scars of this preventable tragedy will remain. With Mustafa Sheikh in Mumbai, Bureau Report, India Today.

0: राम के नाम पर तो वोट लिया, पर राम का नाम बदनाम हो रहा है। अभी अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी खुलासे हुए हैं कि वहां भी चंदा चोरी हुआ है। ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में। और चंदा चोरी तो बिल्कुल साफ हुआ है, हजारों करोड़ का चंदा चोरी हुआ है उत्तर प्रदेश में, और अंदर से ही ये सब जानकारी आ रही है।
1: अगर वो आरएसएस और वीएचपी को जिम्मेवार ठहरा रहे लूट में, तो उनको एसआईटी ने समन करना चाहिए, उनका बयान रिकॉर्ड करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये किस आधार पे कहा। ये कहने का क्या कारण हुआ कि आरएसएस ने या वीएचपी ने इस लूट में कोई हिस्सा लिया है? और अगर ये बयान सिरे से झूठा है तो सनसनीखेज और असंतोष और गुस्सा भड़काने वाला बयान है, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और उनको भी दंड मिलना चाहिए।

0: राम के नाम पर तो वोट लिया, पर राम का नाम बदनाम हो रहा है। अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी खुलासे हुए हैं कि वहां भी चंदा चोरी हुआ है। ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में। और चंदा चोरी तो बिल्कुल साफ हुआ है, हजारों करोड़ का चंदा चोरी हुआ है उत्तर प्रदेश में, और अंदर से ही ये सब जानकारी आ रही है।
1: अगर वो आरएसएस और वीएचपी को जिम्मेवार ठहरा रहे लूट में, तो उनको एसआईटी ने समन करना चाहिए, उनका बयान रिकॉर्ड करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये किस आधार पे कहा। ये कहने का क्या कारण हुआ कि आरएसएस ने या वीएचपी ने इस लूट में कोई हिस्सा लिया है? और अगर ये बयान सिरे से झूठा है तो सनसनीखेज और असंतोष और गुस्सा भड़काने वाला बयान है, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और उनको भी दंड मिलना चाहिए।

0: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। जो एक हेनरी फोर्ड था, जो फोर्ड मोटर कंपनी का मालिक था, उसने उस समय गाड़ी चलाई है बायोफ्यूल से, केरोसिन से, फॉसिल फ्यूल से। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने। मुझे याद था जब मैं ब्राजील में राजदूत था, मैं बात कर रहा हूं 2006 से लेकर 2008, उस समय शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, शायद उससे पहले या बाद में, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: जो E20 का माइग्रेशन हुआ है वो काफी कैलिब्रेटेड रहा है और काफी टेस्टिंग और सब कुछ देख के किया गया है, और उसमें काफी मतलब कि सोच समझ के सब फैक्टर्स को देख के गवर्नमेंट ने, टेस्टिंग एजेंसीज ने टेस्टिंग करने के बाद इसको लागू किया है। 2023 के बाद में जितनी भी गाड़ियां बिक रही हैं वो E23 मटेरियल कंप्लायंट है, E20 मटेरियल कंप्लायंट है, और उससे पहले भी जो गाड़ी थी उनके टेस्टिंग से ये दिखा कि गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप E20 डालते हैं।

0: The waterlogged roads lies a far deadlier story. An 18-year-old boy was killed after a tree branch snapped and struck him while he was riding through Are Colony in Goregaon East during heavy rain. He was rushed to a nearby hospital but succumbed to his injuries, adding to the growing list of rain-related deaths in the city. Hours earlier, a 63-year-old man in Kurla, Yunus, fell prey to monsoon fatality when a massive tree crushed his shop.
1: ये पेड़ के एक बीच की फांदी थी जो कि बहुत ही मजबूत फांदी थी और अंकल जी जो क्या नाम था उनका यूनिस भाई वो बाइक से आए और दुकान का सामान रखने के लिए सेटर वेटर वो बाइक से उतर ही रहे थे और फांदी डायरेक्ट उनके मुंह पे जाके गिरी और मुंह पे गिरने के वजह से वो डायरेक्ट नीचे जमीन पे गिर गए।
2: हमारे यहाँ के नगर सेवक आरोग्य समिति के अध्यक्ष उन्होंने दो बार प्रशासन को पत्र भी दिया था कि ये डेंजर जोन में लग रहा है पेड़, लेकिन प्रशासन ने उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की ये इंक्वायरी का पार्ट है। इसके ऊपर हम लोग पूरी इंक्वायरी लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम उनकी फैमिली के साथ यहाँ पे खड़े हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उनको 5 लाख का जो अर्थ सहाय है वो भी मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ।
0: It comes just days after 11-year-old Vihan Srivastava was killed when an old, allegedly inspected and a healthy tree collapsed right onto his moving bus in Chembur. And the absolute breaking point, in Sakinaka, a 55-year-old man fell to his death into an open manhole which was being cleaned then. From deaths in tree collapse to dying in manhole, the price of administrative apathy is being paid in Mumbaikar blood. The red alert will eventually pass, but the scars of this preventable tragedy will remain. With Mustafa Sheikh in Mumbai, Bureau Report, India Today.